0: है लाइका गोल्ड।
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान,
2: देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
3: साफो ट्रेवल, at all protected.
4: You know how fans shout at football matches?
5: Oh, wake up!
4: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
6: सारी रात Bollywood classics का साथ, सिर्फ Laika Gold पर.

मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।

हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भवाइए हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मे जे बुझे।

सो मैं विसर न जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जागले, जे तिस नदर ना।

मन कोई मने सुध होवे मन बुद्ध मने सगल पवन की शुद्ध मने मोह चोटा ना खाए मने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मने मार्ग ठाक ना पाए मने पत्स्यों प्रगट जाए मने मग ना चले पंथ मने धर्म सेती संबंध

जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार। वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई भलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए,

तेरे भगत रसाले। होर के ते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई है भी।

जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहिब नानक रहन जाई।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बो लख होवें, लख होवें लखवीस, लख लख

जोर ना जीवन मरण है जोर, जोर ना राजमाल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथे पाए, नान गया जापै जाए, जाए।

0: खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7:30 PM ऑन कलर्स एंड वॉच इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार.
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
2: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m.

0: Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on travelhubworld.com. Flights and holidays, humse sasta kahin nahi mil sakta. Call Travel Hub 24/7 on 0208-782-8833 or visit travelhubworld.com.
1: Travel Hub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
1: Visit travelhubworld.com.
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
3: इस दिसंबर ठंड को बोलो गुड बाय
4: जॉइन महाराजा टूर्स ऑन अ 14 नाइट कैरिबियन क्रूज डिपार्टिंग 6 दिसंबर विद डायरेक्ट वर्जिन फ्लाइट्स फ्रॉम हीथ्रो टू बारबाडोस खूबसूरत बीचेस सनशाइन और 8 अमेजिंग कैरिबियन आइलैंड्स आपका इंतजार कर रहे हैं प्राइसेस फ्रॉम जस्ट £1,499 पर पर्सन ट्विन शेयर सीट्स लिमिटेड है तो आज ही बुक कीजिए विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154
5: शोएब आलम पेश करते हैं सोलफुल कवाली की महफिल कवाली क्वीन तैयबा खान के साथ
6: अपना बनाया तेनू
5: लुत्फ लीजिए उनकी शानदार गायकी का वेंसडे 9 सितंबर ग्रीनफुट टाउन हॉल में और थर्सडे 17 सितंबर इल्फट टाउन हॉल में टिकट स्टार्टिंग फ्रॉम £20 वीआईपी एंड मीट एंड ग्रीट टिकट्स आल्सो अवेलेबल बुकिंग और इंक्वायरी के लिए कॉल शोएब आलम ऑन 07939137216 टिकट्स आल्सो अवेलेबल एट खान बाबा रेस्टोरेंट 407 हाई रोड इल्फट
7: भक्ति संस्कृति और रामायण की अमर कहानी अब देखिए लाइव ऑन स्टेज द शोमैन स्टूडियो प्रेजेंट्स श्री राम लीला अ ग्रैंड डिवाइन कल्चरल शो 18 सितंबर को बेक थिएटर हेज में एक ही दिन में दो ग्रैंड शोज दोपहर बाद 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक प्रभु श्री राम की लीला हनुमान जी की भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का दिव्य अनुभव 18 सितंबर बेक थिएटर हेज टिकट्स बुकिंग के लिए विजिट करें shriramleela.theshowmanstudio.co.uk
8: 07300998823 नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेशन बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सेलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823
9: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100 Atoll Protected.
10: Big Boss mein is baar milega pardaan aur extra jeevan daan. Tab has tu meri jaan.
11: Big Boss Season 20, every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. And for the first time, watch a live feed from the Big Boss house, exclusively on Jio Hotstar.
12: Like a Radio Network, proud hospitality partner

0: दिया।
1: थैंक यू हनी, थैंक यू।
0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम पैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली,

0: इंडिया गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट ट्रेवल हब world.com
2: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो एक्सपीरियंस द डिवाइन
3: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए
2: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है दिवाली स्टोरी द जर्नी ऑफ राम एंड सीता
3: अ स्पेक्टेकुलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर
4: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा
3: Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

0: की नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: Hey gorgeous, join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
3: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
2: Get your free tickets. Book now using the promo code LIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
3: Exclusive media partners LIKA Radio. Sponsored by Sari Pleta, Shana Foods, Begin and Regrow.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
5: 07300998823 नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेजन बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सेलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823
6: ड्रीमिंग ऑफ पैराडाइज
7: डिस्कवर द इंडियन ओशन विद स्काईलॉर्ड क्रूज एंड हॉलीडे Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
8: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
7: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
8: At all protected.
9: The South Asia Film Festival UK brings to the big screen Raj Kapoor's Sangam in stunning 4K on the 4th of October. Celebrate 50 years of Yash Chopra's Kabhi Kabhi on the 11th of October and marking its 25th anniversary, Dil Chahata Hai on the 18th of October. And before every screening, a filmy sing-along medley celebrating the greatest songs and stars supported by BFI National Lottery Funding, official radio partner Leica Radio. Book now at showcasecinemas.co.uk/SAFUK or visit safuk.com.
10: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24 our line.
11: sonatours.co.uk special offer Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off. Call Sona Tours now on 0208-951-0111.
12: Vandiramam Sadaiva Mariyada Purushottamam Lokanatham Sriram Sriram
13: Diwali Story, The Journey of Ram and Sita.
14: Book now on DiwaliStory.com exclusive radio partner Leica Radio Network.
15: Up next, Ravi Sharma with the Ravi Sharma Show on Leica Gold.

0: Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
1: वेरी गुड मॉर्निंग। बैक टू बैक संगीत के बाद भाई हम बताते हैं आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिया जा रहा रेट पाउंड के मुकाबले रुपयों में। तो आज का जो रेट है एसबीआई यूके फॉर वन पाउंड दे आर गिविंग 127.9 रुपीस, और क्षमा कीजिए अभी वो बढ़ गया है, अब 128 रुपये और 40 पैसे हो गया है रेट एक पाउंड का। यस, नोट कीजिए, अभी बदला है 128.4 रुपीज़ मैक्सिमम दे आर गिविंग फॉर वन पाउंड। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप।
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Laika Gold, 10:35 AM.
3: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera, every day at 8 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
5: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
4: डेजर्ट सफारी,
5: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
4: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
5: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
3: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.

0: ऐसे
1: सेट को माइक्रोवेव फूड कंटेनर
2: हर मौके पर काम ये आए, घर घर खुशियां लाए।
1: जहां जिंदगी वहां सेट को माइक्रो।
3: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
4: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
3: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
4: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर।
5: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा।
4: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
6: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
7: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
6: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
7: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
4: London, get ready for an unforgettable night.
8: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
4: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
8: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
4: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
8: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
4: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network. Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The new Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danu Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
9: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
10: The cycle of love. From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true life adventure.
11: I left behind everything I knew.
10: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
11: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
10: The cycle of love. In cinemas nationwide from September the 18th, book now at thecycleoflovefilm.com.
12: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
13: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
14: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
15: लौट आइए संगीत की ओर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। माय नेम इज़ बताना जरूरी है क्या यार? रोज रोज आकर के रिपीट करती हूँ। सब जानते हैं कौन है तू, सब जानते हैं कौन हूँ मैं। नहीं, चलिए साहब, कम से कम मैं राजीव भाटिया नहीं हूँ। राजीव भाटिया को अपना नाम बताने की ज़रूरत पड़ती है तो मुझे भी पढ़नी चाहिए भाई। हर रोज अपना परिचय देना चाहिए, सबको बता देना चाहिए कौन हूँ मैं।

0: सीधे साधे अक्षय भाई, टेढ़े मेढ़े अक्षय हैं, सीधे साधे अक्षय हैं, शरीफ हैं, बदमाश हैं, कॉमेडियन हैं, बहुत कुछ हैं। मैं कह रहा था कि ये जो राजीव हरिओम भाटिया, इनका असली नाम, फिल्मी नाम इनका अक्षय कुमार, और कभी कभी भाई जो कैरेक्टर का नाम होता है ना, वो असली नाम से ज़्यादा लोकप्रिय हो जाता है। आज अक्षय कुमार अपना जन्मदिन मना रहे हैं और हम आप सब की ओर से उन्हें हैप्पी बर्थडे का पैगाम पहुंचा रहे हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू अक्षय।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: आज के दिन के साथ बहनों भाइयों, वैसे तो बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। क्या आप विश्वास करेंगे कि अमेरिका का नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज ही के दिन 9 सितंबर के दिन पड़ा था। साल बहुत पुरानी बात है। और आज जन्मदिन मनाने वालों में एक और पार्श्व गायिका अनुराधा पोडवाल भी शामिल हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स अनुराधा जी।

0: अनुराधा पोडवाल आज अपना जन्मदिन मना रही हैं भाई, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू हर। याद आती है मुझे वो मुलाकात है, वो भाई पुराना समय जब गुलशन ग्रोवर के साथ मैंने उन्हें इंटरव्यू किया था स्टूडियो में, मैंने उनके साथ शो भी किए। अब भाई सभी जो रेडियो में हैं, टीवी में हैं, इस तरह के कार्यक्रमों से जुड़े हैं, उनकी मुलाकातें फिल्मी सितारों से होती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, फिल्मी गायक कलाकारों से भी। पर मैंने अनुराधा जी के साथ साउथहैम्पटन में एक शो किया और यहाँ साउथ बैंक में भी लंदन में एक शो उनके साथ किया, उनकी बेटी कविता भी साथ थी। और क्या मधुर कंठ है भाई अनुराधा जी का। पार्लियामेंट में रिसेंटली हमारी मुलाकात हुई थी, यहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जब उन्होंने संस्कृत में कुछ श्लोक गाए और सबका दिल जीत लिया। भाई उन्हें जन्मदिन की बधाई दें, और जन्मदिन की बधाई दें अक्षय कुमार को भी। भाई वो जन्मे थे 9 सितंबर 1967 में और अनुराधा जी जन्मी थी 9 सितंबर 1900 कितना, खबरदार जो साल बताया तो महिलाओं की उम्र नहीं बताते हैं, शर्मा जी शर्म करो। 10:30 बज चुके हैं, समाचारों का समय है। माय नेम इज रवि शर्मा एंड आई एम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून, एंड इफ यू हैव जस्ट जॉइन मी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: लाइका रेडियो नेटवर्क। अब आप रवि शर्मा से आज के खास खास समाचार सुनिए। सऊदी अरब पर भाई हूती हमले हुए हैं, और उस पर जब मीडिया ने सवाल पूछे तो भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कुछ इस तरह से जवाब दिए। उन्होंने कहा कि भारत सऊदी अरब के सॉवरेन इलाके पर हुए हमलों की निंदा करता है, खासकर नागरिक और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने की वो आलोचना करता है। बयान में ये भी कहा गया है कि लोकल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को कमज़ोर करने वाले और बाबल मंदीप में शिपिंग की आज़ादी के लिए खतरा पैदा करने वाले ऐसे हमले मंजूर नहीं हैं। यमन में सऊदी अरब की लीडरशिप वाले सैन्य गठबंधन ने दावा किया है कि ईरान समर्थित हूती लड़ाकों की ओर से सऊदी अरब पर किए गए हमलों में कम से कम 73 लोग जख्मी हुए हैं। उधर पाकिस्तान ने हूती लड़ाकों को वार्निंग दी है और कहा है कि मक्का समझौता एक्टिव हो सकता है। आप जानते हैं मक्का समझौता, भाई वो जो तीन देशों का समझौता हुआ कि अगर किसी पर अटैक हुआ तो वो तीनों पर वो हमला माना जाएगा। पाकिस्तान ने कहा कि मक्का डिफेंस समझौते के तीनों सदस्यों में से किसी पर भी अगर हमला होता है तो इस मामले में कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये हमला तीनों देशों पर मारा जाएगा। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी वार्निंग दी है कि सऊदी अरब पर हूती लड़ाकों के हमलों के बाद ये समझौता एक्टिव हो सकता है, लागू हो सकता है। पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की यह टिप्पणी यमन में ईरान के हिमायती हूती हथियारबंद गुटों की ओर से सऊदी अरब के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन के सिलसिलेवार हमले शुरू करने के कुछ घंटों बाद आई है। भारत से आने वाली खबरों में राहुल गांधी ने पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा और कुछ इल्जाम लगाए हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि पंजाब की आप सरकार में एक खतरनाक पैटर्न दिखाई पड़ रहा है, सरकारी नाकामी पर सवाल करोगे तो जवाब धमकी और टॉर्चर से मिलेगा। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि एक व्यक्ति को पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल पूछने के बाद इतना टॉर्चर किया गया कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। ईरान में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC की करीबी समाचार एजेंसियों ने जॉर्डन में अमेरिकी फौजी ठिकानों पर ईरानी मिसाइल हमलों के एक और दौर की सूचना दी है। इसमें बताया गया है कि मिसाइल्स से पूर्वी जॉर्डन में स्थित प्रिंस हसन फौजी हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया है। बताया जा रहा है कि इसी बीच ईरानी सूत्रों ने जॉर्डन पर मिसाइल हमलों के दौर से संबंधित कई वीडियोस फुटेज जारी किए हैं। इनमें से कुछ में उन समय का जिक्र है जब ईरानी मिसाइल्स एयर डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए सीधे लक्ष्य पर जाकर के गिरी थी। भारत से आने वाली खबरों में महाराष्ट्र में अमृता फडणवीस, ये कौन है भाई, ये चीफ मिनिस्टर की पत्नी है, इनका एक बयान आया है। गरबे में मुसलमानों की एंट्री को लेकर के उन्होंने कहा है कि गरबे में जो नवरात्रों में भाई डांडिया गरबे होते हैं उनमें मुसलमानों को एंट्री न दिए जाने की मांग पर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत कुछ सोच के कही है मैंने बात, मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहती, लेकिन इतना कहूँगी कि गरबा एक नेशनल फेस्टिवल है, राष्ट्रीय उत्सव है, इसे इंटरनेशनल तरीके से मनाया जाता है। इसलिए अगर किसी कम्युनिटी, किसी धर्म या किसी भी मजहब का कोई व्यक्ति बिना कोई हंगामा किए शांति से आकर के इसे देखना चाहता है, इसमें शामिल होना चाहता है, तो मुझे लगता है कि यह ठीक है। लेकिन इसके पीछे और क्या कारण है जो ये रोक लगाई जा रही है, इसकी मैंने अभी स्टडी नहीं की है। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी राकेश मेहता ने नोएडा में अपने घर पर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। राकेश मेहता ने शीला दीक्षित के चीफ मिनिस्टर रहते हुए चीफ सेक्रेटरी 2007 से और 2010 के तौर पर चीफ सेक्रेटरी के रूप में सेवाएं दी थी। वो 1975 बैच के आईएएस अधिकारी थे। बताया जा रहा है कि उनके घर से एक सुसाइड नोट मिला है। मेहता ने अपनी मानसिक और हेल्थ संबंधी समस्याओं को इस कदम का कारण बताया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि पिछले दो दिनों में एक अमेरिकी युद्ध पोत को दो बार निशाना बनाए जाने के जवाब में अमेरिकी फौज ने ईरान के 5 तेल टैंकर्स को टैंकर्स पर हमला किया है। सेंटकॉम के मुताबिक इनमें 4 ईरानी तेल टैंकर्स का संबंध ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर से था और जो ओमान की खाड़ी में थे। एक अन्य टैंकर को खार्ग द्वीप के पास निशाना बनाया गया है। विजय माल्या ने खुद को भगोड़ा बताए जाने पर एक दावा किया है, बताया है कि वो क्यों भारत नहीं जा सकते। पूर्व राज्यसभा सांसद और कारोबारी विजय माल्या ने एक बयान दिया है। वो कहते हैं कि मैं भारत आने से इनकार करने वाला भगोड़ा हूं। जो लोग कह रहे हैं वो सुन लें, कृपया जान लें कि मैं सन 1992 से यहां ब्रिटेन का परमानेंट निवासी हूं। मुझे फिलहाल कानूनी रूप से इस देश से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए नहीं जा रहा हूं। ये सब भारत सरकार की ओर से की गई दिखावटी कार्रवाइयों से शुरू हुआ है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, लोगों को मेरी स्थिति को समझना चाहिए। आपको बता दें भाई, ये क्रिकेट मैच में हमने भी देखा था कि विजय माल्या वहाँ नजर आए तो लोगों ने उनके खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए और उन पर छींटाकशी भी की गई थी। वेल, ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं। और बहन भाइयों, क्रिकेट में अगर आपकी दिलचस्पी है तो बता दें कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम टेस्ट मैच आज खेला जाना है। बर्मिंघम में ये मैच खेला जाएगा। 11 बजे मैच शुरू होगा। स्कोर के आंकड़े हम आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
1: ये है लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: दो मुखर्जी अपना स्वर साझा कर रहे थे इस गीत में, अव्वल सपना मुखर्जी एंड जॉली मुखर्जी। गीत संगीत की महफिल सजी है लाइका रेडियो नेटवर्क के लाइका गोल्ड रेडियो पर और लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स, गुडनेस इन एवरी बाइट, ट्राई इट टुडे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
2: दिस इज लाइका गोल्ड।
3: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ओल्ड ट्रैवल।
0: और साउथ ओल्ड ट्रैवल का संदेश फिर याद दिलाते हैं भाई, दे आर नोन फॉर इट्स दे आर कंपेटिटिव हॉलीडे डील्स टू दुबई। कॉन्टैक्ट साउथ ओल्ड ट्रैवल ऑन 0208-574-8410 एंड रिमेंबर साउथ ओल्ड ट्रैवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: हॉलीडे ब्रेक्स वर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ओल्ड ट्रैवल, लो प्राइसेस फॉर फ्लाइट्स, होटल्स और हॉलीडे पैकेजेस। विजिट southoldtravel.co.uk। Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: लाइका गोल्ड
0: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
5: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट ट्रेवल हब world.com।
6: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
7: Lights on, shutters up, staff ready.
6: But today's customers don't start on the high street.
7: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
6: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
7: They walk into your competitors.
6: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
7: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.

0: कुकर माइक्रोवेव फूड।
1: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
2: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
1: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
2: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर।
3: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा।
2: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आवर रेडियो नेटवर्क।
4: No, sorry, mate.
5: No, we don't have that part.
6: Have you tried down the road?
7: We can get it in, but it won't be for a few days.
8: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorized repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
9: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour. From the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
10: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
11: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
10: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
12: गेट रेडी क्रिकेट फैंस, द T20 बैटल इज ऑन। टीम इंडिया टेक्स ऑन अफगानिस्तान इन 3 एक्सप्लोसिव T20 इंटरनेशनल्स फ्रॉम 13th टू 17th सितंबर। Big sixes, flying stumps and edge of the seat action. Live from 2:30 p.m. exclusively on Jio Hotstar UK. Download and subscribe now.
13: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
14: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
15: मैं लोगों के प्यार के किस्से

0: आशा भोसले और रफी साहब की आवाज में आपने ये गीत सुना। भाई कल आशा जी का जन्मदिन था, आज अनुराधा पोडवाल का जन्मदिन है। गायक कलाकारों का सीजन चल रहा है जन्म लेने का। हमें संदेश मिला है गुजरात से, वडोदरा से। हितेश भाई लिखते हैं कि आज उनके बेटे का जन्मदिन है। भाई जो गीत पसंद आए ना हितेश भाई, वो नंद के नाम कर लेना आप। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू हिम। 10 to 11 समय हो गया है, धीरे धीरे समाचारों की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको लम्फाई के रेट्स बताएं।
1: ये है लाइका गोल्ड। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो रेट्स नोट कर लीजिए। एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग 128.72 रुपीज इन इंडियन करेंसी, और पाकिस्तानी करेंसी में 375.01 दे रहे हैं रुपए। बांग्लादेशी टके दे रहे हैं 166.43, श्रीलंकन रुपए 444.72 और अफगान अफगानी 88.19.
1: Laika Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Laika. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Well, the gold is trading at the rate of 104.32 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Laika Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the house of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
3: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
5: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
6: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
7: Dubai is the place. 11,
6: 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
8: Danube 11, 11. Danube Properties.
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
3: New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
10: The wait is finally over.
11: अब सही सुर लगा रहे मुमताज.
10: Mirzapur is coming to the big screen.
12: गद्दी ना तो विरासत से मिलती ना सियासत से.
10: Power, revenge और Mirzapur की गद्दी के लिए फिर मचेगा बवाल.
13: अबे कालीन भैया है वो किंग ऑफ Mirzapur.
10: पंकज त्रिपाठी एज कालीन भैया, अली फजल एज गुड्डू पंडित और Mirzapur के आइकॉनिक कैरेक्टर्स अब सिनेमा में और भी बिगर. Mirzapur द मूवी इन सिनेमाज नाउ.
12: Mirzapur में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा.
14: We're finally going home for the wedding.
15: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
14: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
15: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
14: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
15: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
14: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
16: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
17: SonaTours.co.uk special offer holiday of a lifetime with amazing discount. 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call SonaTours now on 0208-951-0111.
18: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
19: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
20: अपने business को UK के largest Asian commercial radio network पर advertise करने के लिए call करें. Leica Radio Sales on 0207 132 1458 या ईमेल करें sales@leicamedia.co.uk.
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा.
0: और लीजिए सुनिए किशोर कुमार और लता जी की आवाजों में ये गीत जो हमें लेकर चलेगा 11 बजे की खबरों तक. वेरी गुड मॉर्निंग.

0: चिंतन यानी थॉट फॉर द डे, आज का विचार। स्वागत है आपका मनोरंजन प्रोग्राम के दूसरे दौर में। माय नेम इज रवि शर्मा और बहन भाइयों, 11 बजे की खबरों के बाद मैं पेश करता हूं चिंतन। आज के चिंतन में याद दिला दें आपको कि भाई संदेश जो है वो तो हर रोज आप सुनते ही नया, लेकिन आज कल इस पूरे सप्ताह में चिंतन को स्पॉन्सर करके आप तक पहुंचा रहे हैं आर्य समाज लंदन वाले। वो कहते हैं कि विश्व में शांति और सद्भाव की ज्योति जगाने के लिए आर्य समाज लंदन आपको विश्व शांति महायज्ञ में सादर आमंत्रित करता है। इस वीकेंड पर यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। वो कहते हैं आइए वैदिक प्रार्थना, आध्यात्मिक चिंतन और एकता के इस विशेष अवसर पर परिवार और मित्रों सहित पधारिए। कब हो रहा है यज्ञ भाई? रविवार 13 सितंबर को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ये चलेगा। आप भी आहुति डालना चाहें तो पहुंच जाइएगा आर्य समाज लंदन, 69 आर्गाइल रोड, W13 0LY। और भाई आहुति डालने वालों में अपना नाम शामिल कराने के लिए आप बुकिंग करवा सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 02089911732। रिपीट 02089911732। और भाई आज के चिंतन के लिए आलेख हमें भिजवाया है भारद्वाज जी ने, श्री अमृतलाल भारद्वाज जो आर्य समाज लंदन के प्रेसिडेंट हैं। आइए सुनते हैं उनका आलेख आज का चिंतन, आज का विचार टाइटल के तहत।
1: चिंतन चिंतन।
0: भाई चिंतन में जो सामग्री हम शामिल करते हैं ये मेरी ओर से कोई उपदेश नहीं है, मैं विद्वानों के महापुरुषों के जीवन से या शास्त्रों से लेकर के या हमारे श्रोताओं में से प्रबुद्धजनों के भेजे हुए आलेख शामिल करता हूं और इसका मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन साहब कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को उपदेश करने का शौक होता है, वो उठते बैठते आते जाते वहाँ लोगों को तालीम देने लगते हैं, बताने लगते हैं। भाई कभी कभी तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है लेकिन कुछ लोग चिढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ एक संस्कृत में कहावत है, पय पानम भुजंगाराम केवलम विश्ववर्धनम। अगर कोई योग्य व्यक्ति है जो आपके उपदेश की कदर करता है उसके सामने तो भाई बोलिए, समझाइए, उसे सिखाइए, लेकिन अगर कोई कुपात्र है यानी डिजर्विंग पर्सन नहीं है, सीखवा को दीजिए जाको सीख सुहाए। बंदरे को क्या सीख दे जो भैया का घर जाए। पय पानम भुजंगाराम यानी सांप को दूध पिलाने से वो स्वस्थ नहीं होगा, केवलम विश्ववर्धनम उसका जहर बढ़ेगा उसमें। वाह, दूध जिसे अमृत का स्वरूप माना जाता है जहर बनता है सांप के पेट में जाके, वो योग्य अधिकारी नहीं है। सीखवा को दीजिए जाको सीख सुहाए, बंदरे को क्या सीख दे जो भैया का घर जाए। भाई ये कहावत सुनी थी बचपन में, भैया एक पक्षी होता है बहुत खूबसूरत घोंसला बनाता है, एक एक तिनका चुन करके उसकी उस कारीगरी को आप देखें ना, कुछ लोग तो भाई ढूंढते हैं कहीं भैया का घोंसला मिल जाए तो उसे तोड़ के घर ले आते हैं, सजाते हैं, पर तिनके तिनके को जोड़ करके इतनी खूबसूरत शेप देता है भैया, कई इलाकों में तो वो बेचे भी जाते हैं। ऐसा एक भैया पक्षी, एक मादा पक्षी, जब बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिरनी शुरू हुई तो भाई वो अपना आधे से ज्यादा घोंसला तैयार कर चुकी थी। उसने एक बंदर को भीगते हुए देखा तो कहने लगी, बंदर भैया मैं जैसे कितनी मेहनत से और कितनी देर से अपना यह घोंसला बनाने की उसमें जुटी हुई हूं क्रिया में, तुम भी अपने लिए कोई जगह सेफ देख लो, वरना बारिश में भीगोगे, ठंड से कपकपाओगे, पछताओगे। अभी समय है। बंदर गुस्से में आ गया। भाई कई बार ऐसा होता है, आप किसी को कोई सीख दे तो वो उसकी ज्ञान को बढ़ाने की बजाय गुस्से को बढ़ाता है। भैया ने फिर कहा, बंदर ने डांट दिया, बंदर को अच्छा नहीं लगा। अब वो भैया और तिनके चुनने के लिए जैसे ही बाहर गई, बंदर ने भाई गुस्से में आके उसका घोंसला चीर फाड़ करके फेंक दिया उठा के। भैया देख देख करके बहुत गुस्सा तो हुई, लेकिन क्या कर सकती थी। उसने फिर कहा, बंदर भैया चलो मैं तो फिर से बना दूंगी, और इस बार किसी ऐसी डाल पर बनाऊंगी जो तुम्हारी पहुंच से दूर हो, लेकिन तुम्हारा क्या होगा। बारिश में याद करोगे मुझे और मेरे इस मशवरे को याद करोगे। बंदरे को क्या सीख दे जो भैया का घर जाए। हम भी भाई उपदेश देने से पहले जांच ले कि व्यक्ति अधिकारी है या नहीं। हम अपने बच्चों को जीना सिखाते हैं, उन्हें बताते हैं। कई बार तो बच्चे उसे पॉजिटिवली लेते हैं, पर कुछ बच्चे भाई जिद करके उसका उल्टा करते हैं। आप किसी बच्चे को कहिए कि भाई उस गली में मत जाना, कीचड़ है, रास्ता खराब है, तो वो जानबूझकर उधर से ही जाएगा। बेटा ऐसा मत करना, तो वैसा ही करेगा, वो बंदर की तरह व्यवहार करेगा और आप पर भी किसी ना किसी तरीके से गुस्सा निकालेगा। हाँ एक और तरीका है बच्चों को सिखाने का, सत्मार्ग पर चलाने का। उन्हें अपने व्यवहार से सिखाइए, उपदेश से नहीं, बातों से नहीं, उन्हें वैसा करके दिखाइए। अपना बर्ताव उनके सामने ऐसे दिखाएं, प्रदर्शित करें कि वो फॉलो करें, और प्यार से स्नेह के साथ ऐसा बर्ताव जब उनके सामने आप बार बार दोहराएंगे तो वैसा करने पर मजबूर हो जाएंगे। हमें अपने बच्चों को प्यार देना है, साथ में संस्कार भी देने हैं। एक अच्छा नागरिक बनने के लिए इंसाफ जरूरी है, बच्चों दिखाओ चल के, उन्हें प्यार से सिखाएं, अपने व्यवहार से

आज का चिंतन, आज का विचार आप सुन रहे थे। और आज के चिंतन के लिए भी भैया हम धन्यवाद देते हैं आर्य समाज लंदन को, जिनके द्वारा प्रायोजित हर रोज इस सप्ताह आप सुन रहे हैं थॉट फॉर द डे, आज का विचार।

0: आज के चिंतन के साथ जो गीत हमने सुनवाया वो गीत था इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, टेकन फ्रॉम गंगा जमुना फिल्म, हेमंत कुमार व साथियों की आवाजें थी। आलेख भिजवाया था हमें आर्य समाज लंदन के प्रेसिडेंट अमृतलाल भारद्वाज जी ने। और बहनों भाइयों ये भी बता दूं कि आर्य समाज लंदन इस सप्ताह चिंतन को प्रायोजित करने के साथ साथ आपको आमंत्रित कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। कहते हैं कि दुनिया में शांति और सद्भाव की ज्योति जगाने के लिए हम एक विश्व शांति महायज्ञ कर रहे हैं, आप भी आइए जुड़िए हमारे साथ। नोट कर लीजिए, रविवार 13 सितंबर को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आर्य समाज लंदन 69 आरगाइल रोड W13 0LY इस स्थान पर यह आयोजन किया जाएगा। आप सब आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए यू कैन कॉल देम ऑन 02089911732। आज का विचार यानी आज का चिंतन अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK याद दिला रहे हैं, भाई पैसे भिजवाना चाहते हैं भारत तो अच्छा रेट मिल रहा है इस समय, मौका है भिजवाइए। आज का रेट सुनिए, एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग 128.4 इंडियन रुपीस। भारतीय मुद्रा में 128.40 का रेट चल रहा है। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच, ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 p.m. on Colours TV and Jio Hotstar.

0: मुझे याद है, आप सबके नाम याद हैं भाई, वो नाम जो सुनकर के बताते हैं कि हम आपके साथ जुड़े हैं, हम आपके कार्यक्रम में आपके साथी हैं, जैसे कि रंजन, भावना, निर्मला जी, अनिल सोनी साहब वियना में, अर्जन दूसरे ही और लास्ट टोरंटो में, राजीव पटेल पम्मी सिंह स्लव में, महेंद्र पटेल क्रॉयडन में, बुशी में जगदीश जी, रागिनी, कीर्ति, नीला चौधरी, जैस्मीन, देश विदेश में, आस पड़ोस में, दूर दराज तक, जहां भी भाई आप हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। सुखी, थैंक यू वेरी मच। और फरीदा गुलाम अली जी, आपकी फरमाइश नोट कर ली है, देखते हैं कब शामिल होती है। हिना जी सुन रही हैं और भाई और भी जो हमारे श्रोता हैं, पर विशेष रूप से देशराज बैसन साहब, आपके संदेश और आपकी कविताएँ क्या बात है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू द लिसनर्स।
1: Maker Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands, with the UK's biggest Asian hits.
0: और भाई एक सूचना भी आप तक पहुंचाने के लिए संदेश है, और ये संदेश ये कह रहा है कि लाइका रेडियो एंड लाइका गोल्ड टीम अप फॉर ए स्पेशल प्रमोशनल इवेंट फॉर सिधायू एट क्वालिटी फूड्स हेज एंड हाउंसलो। Join Ruby Raza, Kajal and Sandy Shah this Saturday on 12th of September and enjoy a free hair massage session with Sidhayu Hair Oil and Sidhayu Shampoo. Explore Sidhayu Toothpaste and experience the natural goodness of Sidhayu Ayurveda Sidhayu. From the house of Baidyanath, with over 100 years of trusted Ayurvedic legacy, come and join them there. भाई नोट कर लीजिए, इसी शनिवार 12 सितंबर को क्वालिटी फूड हाउंसलो एंड क्वालिटी फूड हेज में तो जरूर जाइएगा और हमारे साथियों से मुलाकात कीजिएगा। और भाई क्या हो गया है हमारे ये, इसको चलता ही जा रहा है।
2: ये है Leica Gold
1: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का भाई जब उदय हुआ ना, और उनकी धुनें जो लोकप्रिय हुई एकदम, और चोटी के संगीतकारों में उनका नाम शामिल हो गया, वो इस तरह के गीत थे उनके।

गीत बहुत बढ़िया है, लेकिन पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गीत आज ही कार्यक्रम में किसी कार्यक्रम में बज चुका है, शायद मुझसे पहले काजल के प्रोग्राम में। पर भाई अब आवाज दी है तो फिर सुनवाना पड़ेगा। हाँ सब है पता, ये गीत है बजाओ।

0: ऐसा होता है फिल्मी दुनिया में।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: Like extra podcast update. Like extra भाई एपिसोड हमारा जो है पॉडकास्ट का वो आ चुका है एपिसोड नंबर 32 और इसका टाइटल है मोहम्मद वकील स्पेशल। भाई मोहम्मद रफी तो सबने सुने हैं लेकिन ये एक गायक कलाकार हैं नौजवान मोहम्मद वकील स्पेशल है, व्यक्तित्व है इनका, आवाज़ इनका, कंठ और इनकी भाई इस संगीत के विषय में जानकारी जानने योग्य है। मैंने उनसे बात की और उनको इंटरव्यू किया तो आप देखिएगा बहुत सारी जानकारी उनके भाई थ्रू हम आप तक पहुँचाएंगे। वकील जी reflects on experiences and memorable moments with the legendary Jagjit Singh and Javed Akhtar. तो ज़रूर देखिएगा लाइका एक्स्ट्रा पर है पॉडकास्ट और ये आपको किन किन माध्यम से देखने को मिलेगा। इट्स अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज़ हियर। Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: This year at Amazon, we're increasing the electric vehicles used for deliveries across Europe to over 10,000. It's a difference you'll notice on your doorstep, where babies are made a fuss of, where we deliver footballs for kids' kickabouts, and where they deliver the football straight into next door's garden.
5: Can they have their ball back, please?
4: We're delivering change where it matters, on your doorstep. Based on projected delivery service partner vehicles across the UK and EU by end of 2026.
6: Ye hai Leica Gold. 10:35 AM.
0: TravelHubWorld.com. कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays. हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
7: TravelHub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
7: Visit TravelHubWorld.com.
8: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
9: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
10: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
11: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
12: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
13: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snell Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena, Wembley in London.
12: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
13: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
12: For more information, contact 07585 801 801. Official radio. Your partner, Leica Radio Network.
14: भक्ति, संस्कृति और रामायण की अमर कहानी अब देखिए लाइव ऑन स्टेज द शोमैन स्टूडियो प्रेजेंट्स श्री राम लीला अ ग्रैंड डिवाइन कल्चरल शो 18 सितंबर को बिग थिएटर हेज में एक ही दिन में दो ग्रैंड शोज दोपहर बाद 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक प्रभु श्री राम की लीला हनुमान जी की भक्ति और बुराई

0: पर अच्छाई की जीत का दिव्य अनुभव 18 सितंबर बेक थिएटर हेज। टिकट्स बुकिंग के लिए विजिट करें shriramleela.theshowmanstudio.co.uk।
1: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
2: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
3: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
4: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
5: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
4: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है।
6: Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
5: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September. Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Gold. London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइका गोल्ड.com पे।

कुछ गीतों का मुखड़ा सुनते ही पूरा गीत आंखों के सामने और भाई कानों के समक्ष आ जाता है। वाल ये संगीत, ये गीत, ये आवाज में हाय शर्माऊं, किस किस को बताऊं मैं अपनी प्रेम कहानी। याद है ना, ये सवाल मैंने जूही चावला और दिव्या भारती से पूछा था और उनका जवाब बड़ा दिलचस्प था। फिर ये गीत, क्या कहने भाई, गीत तो पुराना है लेकिन यादें तो हमेशा ताज़ा रहती हैं, नहीं रहती हैं, कहीं नहीं गई रहती हैं। मेरा गांव मेरा देश वाज द नेम ऑफ द फिल्म। पर गीत से पहले आपको क्रिकेट का स्कोर बता दूं, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, भाई तीसरा टेस्ट मैच शुरू हो चुका है बर्मिंघम के एजबेस्टन ग्राउंड में और स्कोर मतलब क्या बताएं, इंग्लैंड ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान के 3 विकेट गिरा दिए हैं उन्होंने और स्कोर बोर्ड पर 26 रन अभी जुड़े हैं।

0: का वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: और आपको बता दूं भाई, लेमफाई के रेट से एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 128.8 रुपीस, अफगानी 88.4, पाकिस्तानी रुपए 374.81 और बांग्लादेशी टके 166.42 और श्रीलंकन रुपए 444.78.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: LIKA
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: Well, the gold is trading at the rate of 104.45 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: और बहनो भाइयों, साथ साथ आपको क्रिकेट का स्कोर बताता चलूं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम टेस्ट मैच एजबेस्टन बर्मिंगहम में खेला जा रहा है। आज इंग्लैंड ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तानी बैटर्स भाई उतरे मैदान में, लेकिन बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। लेट मी टेल यू द स्कोर, अभी जो ताज़ा स्कोर है, पाकिस्तान ने 29 रन बनाए हैं और 4 खिलाड़ी उसके वापस पवेलियन लौट चुके हैं, 29 for 4 विकेट्स। दैट्स द प्रेजेंट स्कोर। पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है, स्कोर से हम आपको जोड़े रखेंगे, लेकिन पाकिस्तानी फैंस को, पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमियों को निराशा होगी इस प्रदर्शन पर जो इस समय स्कोर बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। जोड़े रखेंगे, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ।
5: This part of the show is sponsored by Anupama. Every day at 8:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
6: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.

ये गीत हमें ले आया है 12 बजे की खबरों के नजदीक। और भाई खबरों में वेल एयर ट्रैफिक कंट्रोल में खराबी के कारण जो कल से चल रही है फ्लाइट्स की डिस्टरप्शन अभी भी जारी है। आज खबर आ रही है कि 250 से भी ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिलेशन का शिकार हुई हैं।

0: किशोर कुमार और मोहम्मद रफी भाई, इन दोनों कलाकारों ने जो इकट्ठे गीत गाए हैं बहुत कम है संख्या में, पर कुछ हटके हैं, कुछ अलग हैं। जैसे कि ये कविता, आज तो हंसने हंसाने का दिन था लेकिन भाई ये गंभीर कविता है। जब हम देखते हैं पेड़ों को पतझड़ के दौर में भाई पत्ते झाड़ते हुए, ऐसे शब्द लिखे जाते हैं, खिजा के आते ही, पतझड़ के आते ही पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं, पुराने पत्ते गिरते हैं नए आ जाते हैं, नए के आगमन में हम ये भूल जाते हैं कि जो पुराना गिरा वो भी एक मुकम्मल अस्तित्व था, वजूद था उसका, अपने होते हुए अपने सब कर्तव्य निभा कर खामोश हो गया। और हम कह देते हैं बड़ी आसानी से कि पुराना था इसलिए झड़ गया, पर क्या सचमुच ये खत्म होता है? नहीं, बात खत्म नहीं होती। ये गिरता हुआ पत्ता वक्त के किताब में एक पूरा जीवन लिख जाता है। शायद इंसान भी ऐसे ही यादों की मिट्टी बनाकर मिट्टी में विलीन हो जाता है। थैंक यू देशराज बसंत साहब, गंभीर कविता। पर आज तो कोई हंसने हंसाने वाली बात, शर्मा जी कहिए ना, लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या कहूं, शेर कहूं? फिर ये शेर आपके नाम है मैडम। अरे आप, ओहो, ये जो रेडियो के इधर आप ही का चर्चा आप, हाँ देखिए, वो यानी आपके लिए कह रहा हूं, वो जो जुल्फों में मुंह छुपाए बैठे हैं, मेरे 10 पाउंड खाए बैठे हैं। वापस कर दो वरना आप। SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch. SBI UK and State Bank of India UK. Reminding you, if you want to send money to India, this is the right time. The rate is good. For £1, they are giving in Indian currency 128.4 rupees. 128 rupees aur 40 paise de rahe hain. Pound ke badle you can transfer via branch, online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions apply. State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Gold. This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
1: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
0: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
1: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
0: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410। साउथ हॉल ट्रेवल, auto protected।
4: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
5: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
4: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
6: अ स्पेक्टेकुलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर।
7: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा।
6: बुक नाउ ऑन दिवाली स्टोरी.com बिफोर दे आर गॉन। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
8: Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting. Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
9: Winter's coming and Mera Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
10: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mera Boiler, get ready for winter.
11: The cycle of love. From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true life adventure.
12: I left behind everything I knew.
11: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
12: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
11: The cycle of love. In cinemas nationwide from September the 18th, book now at thecycleoflovefilm.com.
13: London, are you ready? Raga Events presents to you for the first time, legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
14: Dil ne ye kaha hai dil se bole chudiya.
13: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
15: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
16: Like a Goal, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoal.com.
17: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: और बहनों भाइयों, Artist of the Week इस सप्ताह रहे हैं मन्ना डे.
17: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
18: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: मन्ना डे के गाए गीत भाई वैसे तो राज कपूर के होठों पर भी सजे और दूसरे कलाकारों के लिए भी उन्होंने गाए, लेकिन कुछ गीत भाई कॉमेडी का रंग लिए महमूद साहब के काम आए. उनमें से एक गीत ये भी है, शिकायतों भरा.
19: भुस भर दिया अयो
0: बद्दुआएं,
19: भुस भर दिया मेरी चाहत में,

0: भर दिया,
1: भूस भर दिया मेरी चाहत में। भूस भरने वाले लोगों ने भाई महमूद पर पिक्चराइज ये गीत मन्ना डे की आवाज में। मन्ना डे है इस सप्ताह के कलाकार आर्टिस्ट ऑफ द वीक, भाई स्पेशली उनके लिए कुछ खास गीत उनके गाए हुए प्रोग्राम में शामिल होंगे, लेकिन कुछ और गीतों में भी आवाज शामिल रहेगी मन्ना डे साहब की।
2: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
1: मोहम्मद रफी के साथ, मोहम्मद रफी साहब के साथ मन्ना डे की आवाज, आइए ले चलें आपको उस दौर में जब आईएस जोहर नाम का एक व्यक्ति फिल्में बनाता था,
0: ये दो दीवाने दिल,
1: खुद भी हीरो बन के आता था,
0: मिलके
1: महमूद साहब को भी साथ लाता।

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और मेरे भाई ये याद आता है हमारा एक दोस्त, ये गीत बहुत सुर में गाता था मंच पर, भाई मधु चोपड़ा। भाई बड़ा सुरीला गायक कलाकार था, लेकिन एक बार वो जो होता ना, ये वेस्पा स्कूटर होता था इंडिया में, भाई उस पर वो सवारी करता था। उन दिनों हर एक के पास तो ये स्कूटर होता नहीं था, उसी के पास था, कभी कभी हम भी उससे लिफ्ट ले लेते थे। एक बार उसको भाई चालान हो गया ओवर स्पीड के मामले में, और जज कहता, ऑर्डर ऑर्डर, क्या जल्दी थी, इतना तेज़ी से स्कूटर क्यों चला रहे थे? कहता, हुजूर जाँच करवा लो, बिल्कुल भी तेज़ नहीं चला रहा था। भला कैसे तेज चला सकता हूँ, ओवर स्पीड कैसे कर सकता हूँ, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा था, ससुराल जाते हुए कोई तेजी से कैसे जा सकता है? नहीं जा सकता भाई। और पता लगा कि वो दोस्त हमारा मधु चोपड़ा बीमार है, उसके स्वस्थ होने की कामना करते हैं यहाँ हजारों मील दूर बैठ करके। जल्दी अच्छे हो जाओ मेरे दोस्त, मिस करते हैं आपकी प्रेजेंटेशन को, आपके गीतों को और आपकी बातों को। और अब कुछ संदेश आपके साथ साझे करने हैं भाई। मैसेज है, कहाँ है, अरे यहाँ है ना, कम ऑन, नहीं आ रहा है। ओके तो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। सीधाइयों वालों का संदेश है भाई, और वो बार बार हम आप तो को याद दिला रहे हैं, तो याद रखिएगा, यहाँ खुल नहीं रहा है।
3: Laika Gold.
4: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

आपके साथ कभी ऐसा हुआ स्कूल जाते हुए आपने प्रार्थना की हो, हे भगवान आज स्कूल में कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाए कि बस छुट्टी घोषित करनी पड़े? हमारा एक दोस्त था, वो उसकी दुआएं जो है बददुआओं से भरी होती थी। कहता था, हे भगवान आज कोई लीडर मर जाए, स्कूल की छुट्टी हो जाए। कभी सोचता, हे भगवान आज स्कूल का हेडमास्टर ही मर जाए। पता नहीं कितनों को निपटा दिया उसने बातों बातों में। और हमने पूछा, भाई तू तो ऐसे सारी क्या कहते हैं वो लीडरशिप ख़त्म कर देगा, सारे बड़े बड़े लोगों को इस तरह से अपनी छुट्टी के चक्कर में मरवा देगा, और ये सब खत्म हो गए तो फिर क्या करेगा, फिर तो स्कूल जाएगा। कहता, नहीं फिर मैं दुआ करूँगा सबसे आखिर में, प्रभु मेरे बापू को ऊपर बुला ले, फिर मैं एक साल की छुट्टी कर लूँगा। भाई क्लास से बचते, स्कूल से बचते, इम्तिहान से डरते हुए उससे भी बचते थे।

0: बहुत डर लगता था भाई इम्तिहान से, पर इम्तिहान तो है, इम्तिहान होता है। आपको याद दिला दो भाई, उदित नारायण और आदित्य नारायण तशरीफ ला रहे हैं, बाप बेटा दोनों मिलकर के धूम मचाएंगे। 90s बॉलीवुड लेजेंड उदित नारायण परफॉर्म्स विद हिज सन आदित्य नारायण एट ओबो अरीना वेम्बले ऑन संडे द 20th ऑफ दिसंबर। टिकट्स अवेलेबल फ्रॉम टिकट मास्टर एंड AXS। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स आर लाइका रेडियो नेटवर्क ऑफ कोर्स।
1: होलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ऑल ट्रैवल।
0: साउथ हॉल ट्रैवल याद दिला रहे हैं भाई, वो बात बार बार फिर दोहरा दें आपके लिए। साउथ हॉल ट्रैवल जो है वो दुबई के लिए जो जो डील्स हैं हॉलीडे की उसके लिए जाने जाते हैं। कॉन्टैक्ट साउथ हॉल ट्रैवल टुडे ऑन 0208-574-8410। वो दुबई की यात्रा के लिए भाई मशहूर है, तो आप उनसे संपर्क कीजिए, घूम के आइए। साउथ हॉल ट्रैवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
2: Ye hai Leica Gold.
3: Leica Gold.
0: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रैवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
4: ट्रैवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट travelhubworld.com।
0: Oh,

0: आशा भोसले मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें और धुन बनाई थी संगीतकार रवि साहब ने। दिस सॉन्ग वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म अमानत।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स इज कमिंग विद मोर फ्लेवर्स एंड हेल्दी ऑप्शन इन अ कन्वीनियंट बोल। कोका नूडल्स, क्विक एंड टेस्टी नूडल्स इन 12 फ्लेवर्स।
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: वेल नोट कीजिए भाई, लेमफाई के रेट्स वो एक पाउंड के बदले भारतीय करेंसी में दे रहे हैं 128 रुपए 93 पैसे, यस 128.93 रुपीस। पाकिस्तानी 375.8 रुपीस। बांग्लादेशी टके फॉर वन पाउंड हाउ मच 166.74। श्रीलंकन रुपए 445.32 और अफगानी 88.72.
4: Leica Radio.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: Leica Gold.
3: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is trading at the rate of 104.52 pounds per gram.
3: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.

दैट्स इट, ये था आज का मनोरंजन प्रोग्राम। रवि शर्मा को इजाजत दीजिए और बाली भाई का इंतजार कीजिए, पर आज बाली नहीं, उनकी जगह आ रही हैं एक मीठी सी आवाज, सरिता सबरवाल। फ्रॉम मी, बाय बाय।

0: गुड आफ्टरनून, आप सुन रहे हैं लाइका रेडियो नेटवर्क के जरिए ये प्रोग्राम लाइका गोल पर, जहां भी बैठे सुन रहे हैं आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि आप खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को एंजॉय कर रहे हैं, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूं और करती रहूंगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन, तो कम ऑन, चीयर अप। लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू एंजॉय। जी और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते, महकते और थिरकते हुए गाने तो चुन चुन कर लाई हूं मैं, और उम्मीद भी करती हूं कि आपकी पसंद की कसौटी पर ये सभी के सभी गीत खरे उतरेंगे और आपकी किसी पुरानी याद की रख को छू जाएंगे। यस यस, आपको कुछ तो याद दिलाएंगे, कब देखी थी ये फिल्म, किसके साथ देखी थी, कब ये पहली दफ़ा फ़ोन ये गाना सुना था, तो मैं क्या कर रही थी या क्या कर रहा था। सो ये सब बातें हमें याद आती हैं, और अगर ऐसी कोई बात याद आ जाए तो मुझे अपने होने का भी एहसास दिला दें और ये भी बता दें कि आपको क्या याद आया। बिना कहे मेरे जो साथी पहुंच चुके हैं स्टूडियो में, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। लगता नहीं है ना कि फिर मैं अकेली हूं, मुझे लगता है आप मेरे साथ साथ हैं और मैं चाहूंगी इसी तरह से इस सफ़र में मेरे साथ रहें टिल 4 o'clock। और 4 बजे सैंडी शाह आएंगे ड्राइव टाइम शो लेकर, और फिर 7 बजे अनीसा नासिर विद द बिग शो। उसके बाद हमारी गोल्डन नाइट्स शुरू होती हैं, ओवरनाइट सर्विस, और सभी प्रोग्राम आप बेहद इंजॉय करते हैं। अब ये तो बता दूं कि मैं कौन हूं और क्यों हूं यहाँ पर। मैं हूं सरिता सबरवाल, आपका साथ देने के लिए आई हूं, क्योंकि आज बाली जी नहीं आ पाएंगे। तो आज बाली जी नहीं आ रहे हैं तो उनकी इस हॉट हॉट हॉट सीट पर मैं बैठी हूं। अब आप सोचेंगे, अरे भाई सरिता, पहले अपने टेलीफोन की रिंग को तो बंद कर दो, कोई घर आया है और मुझे आवाज़ यहाँ तक आ गई है। सॉरी अबाउट इट, पर पता चल गया कि कोई घर में आया है। एनीवे, आज कुछ बर्थडेज भी हैं, कोई बर्थ एनिवर्सरी या किसी की डेथ एनिवर्सरीज भी हैं, तो वो सभी मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी। पर ये बात है कि आपको मेरा साथ ज़रूर देना होगा। महबूब खान साहब 9th of September को इनका जन्म हुआ था, तो इनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है। हु इज़ अ ग्रेट प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड एक्टर। लीला चिटनिस एक्टर रही और इनका भी बहुत बहुत रिगार्ड किया जाता है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, और इनका भी आज बर्थ एनिवर्सरी है, तो इन्हें भी हम याद करेंगे। देन जिगर मुरादाबादी साहब, पोएट एंड लिरिसिस्ट, 9th of September 1960 में इनकी डेथ एनिवर्सरी, इनकी डेथ एनिवर्सरी है, ही पास्ड अवे। एंड 9th of September 1967 में हमारे अक्की जी का बर्थडे, यस, आज के दिन पैदा हुए थे इन 67 अक्षय कुमार। एंड उनकी ही दो फिल्मों के गीत आपने सुने, और एक और बता दूँ, 9th of September 1980 में GM दुरानी साहब की डेथ एनिवर्सरी है, तो आज हम उनको भी याद करेंगे। सो ये दो गीत जो आपने सुने वो मैंने चुने थे किस फिल्म से, पहला गीत था अक्षय कुमार की ही फिल्म से जिसका नाम था मोहरा। इसमें रवीना टंडन थी, सुनील शेट्टी थे और भी बहुत सारे एक्टर थे, बहुत खूबसूरत फिल्म थी। इस फिल्म का संगीत बड़ा ज़बरदस्त था और ख़ास तौर पर ये गाना तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, ये गाना बड़ा मशहूर हुआ था इन 1994, एंड उदित नारायण एंड कविता कृष्णमूर्ति ने गाया था। और इस फिल्म का संगीत तैयार किया था किसने, विजू शाह ने, यस। और आज हम बात कर अगर अक्षय कुमार की, तो बता दें अक्षय हरिओम भाटिया इज हिज रियल नेम, और बॉर्न एज राजीव हरिओम भाटिया, नोन प्रोफेशनली एज अक्षय कुमार। और इन्होंने सबसे पहले बॉलीवुड में जब कदम रखा था तो पहली फिल्म थी इनकी आज, अगर आपको याद हो वो फिल्म थी आज जिसमें इन्होंने सबसे पहले काम किया था। एंड आज फिल्म में क्या था, डायरेक्टेड बाय महेश भट्ट साहब एंड प्रोड्यूस्ड बाय कुलजीत पाल, एंड इट स्टार्स राज बब्बर, स्मिता पाटिल, कुमार गौरव, मार्क जुबैर, अनामिका पॉल, एंड ऑफ कोर्स अननोन में थे अक्षय कुमार, वेरी स्मॉल रोल था। लेकिन फिर इन्हें लॉन्च किया गया था फिल्म सौगंध में, और जिसका गीत आपने अभी सुना, लैला को भूल जाएंगे। 1991 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, पर बननी शुरू हो गई थी 90 से पहले ही। एंड डायरेक्टेड बाय आर राज एनसीपी साहब ने इसे डायरेक्ट किया था, एंड माना जाता है कि अक्षय कुमार की यही डेब्यू फिल्म रही। इस फिल्म में इनके साथ थे राखी, अक्षय कुमार के साथ शांति प्रिया एंड महेश खन्ना, एंड इस फिल्म में मयूर वर्मा भी थे, इफ़ यू डू रिमेम्बर। आनंद मिलंद का संगीत था और ये फिल्म रिलीज हुई थी 25th of January 1991 में। सो ये सारी जानकारी अब तीनों आवाज़ में मेरी कोशिश रहेगी, एक एक गीत तो क्योंकि 90s में ही इन्होंने काम किया, तो एक गाना टॉप सॉन्ग ऑफ द आवर विल बी अक्षय कुमार की फिल्म का, बाकी के गाने मिले जुले होंगे। इस आवर में मिले जुले गीत हैं, लेकिन नेक्स्ट आवर में मेरी कोशिश है कि महबूब खान साहब की फिल्मों के कुछ एक गीत मैं आप सब तक पहुँचाऊँ। आइए बढ़ें आगे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, भी अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए पैसे इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो काम बड़ा आसान है। यू कैन वॉक इन टू द ब्रांच, यू कैन गो ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए आप घर बैठे ही पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। अब ये तो जान लीजिएगा कि आज आपका एक ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड कितने पैसे दिला सकता है। मैक्सिमम यू कैन गेट इज 128 rupees and 40 paisas, इट डिपेंड्स हाउ मच यू ट्रांसफर।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीस एंड सीज अप्लाई।
2: Good afternoons with Bali Brahmbhat. Bali Brahmbhat is sponsored by Gemin Foods. Tamara tea time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pearl, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe tamara najikna Asian shops ma.
3: This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
5: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the The New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
6: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
7: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
6: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
7: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
6: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
7: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
6: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
7: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.

0: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और मेरे साथी जो बराबर मैसेजेस लिख रहे हैं, थैंक यू एवर सो मच, आपको गाने पसंद आ रहे हैं और कह रहे हैं कि महबूब खान के गीत सुनने के लिए हम बेताब हैं, तो यस, नेक्स्ट आवर में महबूब खान साहब की फिल्मों के कुछ एक गीत ज़रूर शामिल करूंगी। आप सुनते रहिए, साथ देते रहिए।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
0: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: ये एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं, जब भी सुनते हैं हमें बहुत पसंद आते हैं। अब ज़रा जल्दी से ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर लूँ। लाइका रेडियो एंड लाइका गोल्ड टीम आर फॉर अ स्पेशल प्रमोशनल इवेंट फॉर सिद्धायु एट क्वालिटी फूड्स हेज एंड हंसलो। जॉइन रूबी रजा, काजल एंड सैंडी शाह दिस सैटरडे 12th September एंड इन्जॉय अ फ्री हेयर मसाज सेशन विद सिद्धायु हेयर ऑयल एंड सिद्धायु शैम्पू। बाल भी ले वहाँ पर, हाँ सिर्फ मालिश नहीं कराइएगा। एक्सप्लोर सिद्धायु टूथपेस्ट एंड एक्सपीरियंस द नेचुरल गुडनेस ऑफ सिद्धायु आयुर्वेदा। सिद्धायु फ्रॉम द हाउस ऑफ बैद्यनाथ विद ओवर 100 years ऑफ ट्रस्टेड आयुर्वेदिक लेगेसी। कम एंड जॉइन अस।
2: Up to Kajalon breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Like a gold.

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.

0: प्रोग्राम के इस आवर में आपने मिले जुले गीत सुने, अपार्ट फ्रॉम टू बैक टू बैक अक्षय कुमार की फिल्मों के गीत। अक्षय कुमार इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे, तो आज हम उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। शबनम जी, अरुणा भूपेन पटेल जी, अर्जुन जी, ज्योति गिरी शाह, संतोष इन हैरो, जगदीश इन बुशी एंड पम्मी सिंह इन स्लाव, जैस्मिन, दिलीप, पुरोहित, चारू, भरत गंगाराम जी, रमा पटेल जी, हरिवदन भाई, नीलम जी, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, मेरा साथ दे रहे हैं बड़े प्यार के साथ। तो आइए अब जरा ये काम भी कर लें।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: A pound in your pocket can get you Indian rupees 128.88 paisa, Afghanis 88.67, Pakistani rupees 375.69, Bangladeshi taka 166.69, Sri Lankan rupee 445.17, Kenyan shillings 175.44 and US dollars 1.35.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now.

0: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: भाई गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो बता दें कि इस वक्त गोल्ड की प्राइस इन द मार्केट इज 104 pounds and 35 pence पर ग्राम.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. poojasweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: और प्रोग्राम का अगला गीत आप सुन पाएंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद, लेकिन इस गीत की फरमाइश मुझे किसी ने भेजी थी. अब मुझे याद नहीं आ रहा इतने सारे मैसेजेस में किसने कहा था कि ये गीत आज के प्रोग्राम में शामिल कर दें. वेल, अगर आप वो हैं तो आपका गीत आ रहा है कुछ ही देर में.
2: मैं हूं नीसा नासिर, लाइक अ गोल्ड लंदन और ग्रेटर मैनचेस्टर में मेरी और आपकी मुलाकात मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे से 10 बजे रात बिग शो में जारी रहती है. बिग शो सुनना भूलिएगा.
3: जेम इन फूड्स स्पॉन्सर्स गोल्ड आफ्टरनून्स फ्रॉम दाल भात पाव भाजी एंड बिरयानी to namkeen khakra chikki potato chips mango pulp pani puri and sweets everything delicious everything for everyone.
4: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20 every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
5: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
6: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
7: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
8: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
6: Southall Travel can take you there.
9: Southall Travel, at all protected.
10: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
5: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
11: Dubai is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
12: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
13: Dubai is the place.
12: 11, 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
14: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
15: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन.
16: द वेट इज फाइनली ओवर.
17: अब सही सुर लगा रहे मुमताज.
16: मिर्जापुर इज कमिंग टू द बिग स्क्रीन.
18: गद्दी ना तो विरासत से मिलती ना सियासत से.
16: पावर, रिवेंज और मिर्जापुर की गद्दी के लिए फिर मचेगा बवाल.
19: अबे कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर.
16: पंकज त्रिपाठी एस कालीन भैया, अली फजल एस गुड्डू पंडित और मिर्जापुर के आइकॉनिक कैरेक्टर्स अब सिनेमा में और भी बिगर. मिर्जापुर द मूवी इन सिनेमाज नाउ.
18: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा.
20: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
21: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
20: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
22: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
23: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
22: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
23: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
22: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
23: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
24: Sonatours.co.uk special offer holiday of a lifetime with amazing discount. 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours now on 0208 951 0111.
0: Across London, this is Bally Brambat on Leica Gold. Leica Radio Network.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने और उम्मीद करती हूँ इन गीतों को पसंद भी किया। पहला गीत मैंने चुना था फिल्म तराजू से और ये विमल कुमार जी ने डायरेक्ट की थी फिल्म इन 1997 एंड इस फिल्म में काम किया था अक्षय कुमार, सोनाली बिंद्रे, अमरीश पुरी एंड रंजीत एंड मोनीश बहल ने। और बता दें कि फिल्म में इनके काम को पसंद किया गया था अक्षय कुमार। और वैसे तो ये खिलाड़ी हैं, मिस्टर खिलाड़ी हैं, और लेकिन मैंने खिलाड़ी का अभी तक कोई गाना शामिल नहीं किया है। सो नेक्स्ट आवर में भी पहला गाना जो होगा वो अक्षय कुमार का बर्थडे मनाएंगे हम और उन्हीं की फिल्म का गीत सुनवाएंगे। इस फिल्म का संगीत दिया था राजेश रोशन ने और ये फिल्म रिलीज हुई थी 1 अगस्त 1997। दूसरा गीत मैंने शामिल किया फ्रॉम द फिल्म प्यार झुकता नहीं। इसके साथ कोई रेलिवेंट स्टोरी नहीं है, पर ये बता दें कि लता जी की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत, लता एंड गीत काफ़ी पॉपुलर हुआ था। प्यार झुकता नहीं, ये था फिल्म का नाम। अब बाकी के इस आवर में हम महबूब खान साहब को याद कर रहे हैं। महबूब खान साहब के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे और जितनी थोड़ी बहुत जानकारी मेरे पास है मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। इतना ज़रूर कहना चाहूंगी कि महबूब खान भारतीय सिनेमा के उन महान फिल्मकारों में से हैं जिन्होंने मदर इंडिया जैसी कामयाब फिल्म देकर हिंदी फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, यानी कि इंटरनेशनली वो खूब पॉपुलर हुए। और आज के इस खास सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं फिल्मकार की जिसने भारतीय सिनेमा को सिर्फ फिल्में नहीं दी बल्कि एक सोच दी, एक पहचान दी। नाम महबूब खान साहब, इंडियन सिनेमा का वो शख्स जिसकी फिल्मों में मिट्टी की खुशबू भी थी और समाज की सच्चाई भी। तो आज के प्रोग्राम के नेक्स्ट पहला जो गीत होगा आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक, वो गीत मैंने मदर इंडिया से चुना है। मदर इंडिया के सारे गाने ही बड़े पॉपुलर थे लेकिन मैंने जो गीत चुना है मुझे उम्मीद है आप पसंद करेंगे। हम जब छोटे भी थे तो बहुत गाते थे इस गीत को, मदर इंडिया का गाना। 1957 में ये फिल्म आई थी, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया। और अगर आपको इसके बजाय कोई और गाना इस फिल्म का बहुत पसंद है तो बाय ऑल मीन्स यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी जल्दी से ताकि मैं गाने को बदल सकूं। मेरी पसंदीदा गीत यही वाला है, नगरी नगरी द्वारे द्वारे। वैसे इस फिल्म में दुख भरे दिन भी तेरे भैया वो गाना भी बड़ा मशहूर हुआ था, वो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे वो गाना भी बड़ा मशहूर हुआ था। तो कौन सा गीत आपके दिल के करीब है? ए नगरी नगरी द्वारे द्वारे, बी दुख भरे दिन भी तेरे भैया, और सी ओ गाड़ी वाली गाड़ी धीरे हाँक रे। जो गाना आपको पसंद है मैं वही गाना प्रोग्राम में शामिल करूंगी, बट यू हैव टू व्हाट्सएप मी वेरी क्विकली।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with YONO SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट, अगर इनके ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी तो आज आपको 1 ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले मिल सकते हैं 128 रुपीज़ एंड 40 पैसा। एंड आप ब्रांच में जाकर पैसे ट्रांसफ़र करा सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, SBI योनो मोबाइल ऐप यूज़ कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: You're listening to Bali Brahmat in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
3: This part of the show is sponsored by Anupama. Every day at 8:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda, a free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
5: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
6: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
5: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता.
6: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September.
7: है प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा.
6: Book now on DiwaliStory.com before they are gone.
8: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
9: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
10: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
11: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
12: Get ready, cricket fans. The T20 battle is on. Team India takes on Afghanistan in three explosive T20 internationals from 13th to 17th September. Big sixes, flying stumps and edge of the seat action. Live from 2:30 p.m. exclusively on Jio Hotstar UK. Download and subscribe now.
13: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta, a ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
14: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
15: London, are you ready? Raghavend presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
16: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 a.m. DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
17: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
18: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: feel good track brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: फिल्म का नाम था मदर इंडिया, जिस फिल्म का गीत मैंने आप तक पहुंचाया और इसमें आवाज़ें थी शमशाद बेगम एंड मोहम्मद रफ़ी साहब की। एक साधारण सा लड़का, एक असाधारण उनका सपना था। 9th of September 1907 में बिलमोरा गुजरात में जन्मे महबूब खान का सफ़र किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। मुंबई आए तो शुरुआत घोड़ों की नाल लगाने के काम से हुई और उसके बाद उनके दिल में जो सपना था फिल्मों की दुनिया में कुछ बड़ा करने का, तो उन्होंने बड़ा करके दिखाया भी। इम्पीरियल फिल्म्स कंपनी में एक्स्ट्रा बने, फिर असिस्टेंट बने और धीरे धीरे कैमरे के पीछे खड़े होकर उन्होंने कहानी कहने का हुनर सीख लिया। He started as an assistant director in the silent film era and as an extra in the studio of the Imperial Film Company of Ardeshir Irani. Before directing his first film, Judgment of Allah in 1935, when he started directing films for the Sagar Films Company. और उनकी notable film थी, he directed for Sagar Movietone and National Studios includes Deccan Queen in 1936, Ek Hi Rasta in 1939, Ali Baba in 1940 and Aurat in 1940 and Behne as well. So एक गीत आपने सुना इनकी फिल्म का, जो कि जिसने एक पहचान बनाई, जो कि जैसे कहते हैं लैंडमार्क थी फिल्म, बहुत बड़ी फिल्म थी मदर इंडिया, जिसमें मल्टी स्टार्स थे, नरगिस थे, सुनील दत्त थे, राजकुमार थे और भी बहुत सारे एक्टर थे। सो बहुत प्यारी फिल्म थी, अगर नहीं देखी जब कभी मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। अब रही बात गाने की चॉइस की, तो मैंने क्यों किया था नगरी नगरी, लेकिन ज़्यादातर मेरे साथियों ने इस गीत की फरमाइश की थी, तो जिन्होंने इस गाने की फरमाइश की थी ज़रा स्माइल दे दीजिएगा। जिन्होंने दूसरा गीत सुनना चाहा था, आई एम सॉरी, किसी और रोज़ ज़रूर शामिल हो जाएगा।
0: ये है लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
2: ये गीत है फ्रॉम द फिल्म सन ऑफ इंडिया, एक और यादगार फिल्म। गाने बहुत खूबसूरत, ये गीत गा रहे हैं मोहम्मद रफी साहब एंड लता जी।

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: सन ऑफ इंडिया से चुना था मैंने इस गीत को, उम्मीद करती हूँ आपने गीत पसंद किया। एंड इस फिल्म में को डायरेक्ट किया था महबूब खान साहब ने, फिल्म में काम किया था साजिद खान, कमलजीत, सिमी ग्रेवाल, जयंत एंड कुमकुम ने। फिल्म का संगीत नौशाद साहब का एंड लिरिक्स लिखे थे शकील बदायूनी जी ने। और इट वॉज द स्पिरिचुअल सक्सेसर टू महबूब खान साहब। सो आइए अब जरा ये काम भी कर लें जल्दी से। राइट कैच लाइव एंड एक्सक्लूसिव क्रिकेट एक्शन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान ऑन जियो हॉटस्टार। 3 1-day इंटरनेशनल्स फ्रॉम संडे 13 सितंबर अंटिल थर्सडे 17 सितंबर फ्रॉम 2:50 PM। डाउनलोड एंड सब्सक्राइब टू द जियो हॉटस्टार ऐप नाउ। जियो हॉटस्टार इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप। सो उम्मीद करती हूँ कि आपने अच्छी तरह से इस बात को समझ लिया है। और एक बात और आपको बतानी है कि लाइका रेडियो एंड लाइका गोल्ड टीम अप फॉर अ स्पेशल प्रमोशनल इवेंट फॉर सिद्धायु एट क्वालिटी फूड्स हेज एंड हंसलो। जॉइन रूबी रजा, काजल, सैंडी शाह दिस सैटरडे 12th of September एंड इंजॉय अ फ्री हेयर मसाज सेशन विद सिद्धायु हेयर ऑयल एंड सिद्धायु शैम्पू। एक्सप्लोर सिद्धायु टूथपेस्ट एंड experience the natural goodness of Siddhayu Ayurveda. Siddhayu from the house of Baidyanath with over 100 years of trusted Ayurvedic legacy. Come and enjoy us, enjoy and join us.
2: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7pm with the best tunes, mind games and a bit of Ye Yavo. Only Like a Gold.

0: मुकेश जी की आवाज़ में फिल्म अंदाज का गीत मैंने शामिल किया। 1949 में महबूब साहब ने ये फिल्म बनाई थी। और क्या कहूँ, महबूब साहब ने भारतीय सिनेमा को वो ऊंचाई दी जहाँ से आज भी सभी फिल्म मेकर्स प्रेरणा लेते हैं। उनकी फिल्मों में संघर्ष था, संवेदनशीलता थी और सबसे बढ़कर इंसानियत थी। एक महान फिल्मकार को हम आज सलाम करते हैं।
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: भई आप Southall Travel के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं एंड कम्पेटिटिव हॉलीडे डील्स टू दुबई दे रहे हैं। कॉन्टैक्ट Southall Travel टुडे ऑन 0208-574-8410। Southall Travels इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. Leica Extra podcast update.
0: जी हाँ, अगर आपने हमारे अभी तक पॉडकास्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। इस बारी के एपिसोड 32 में मोहम्मद वकील स्पेशल है, जिसे होस्ट कर रहे हैं रवि शर्मा, और बहुत सी मोहम्मद वकील साहब से बातचीत जिसमें उनकी म्यूज़िकल जर्नी के बारे में खूब जानकारी आपको मिल सकती है। देखिएगा ज़रूर। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट इज अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर।
2: Leica Gold.
3: Time's flying by, so this autumn, let's slow things down. Let's savor the moment. It's the perfect time to discover a new autumn favorite, because the Maple Hazel range has returned to Costa Coffee, transforming your favorite coffee into a true taste of autumn. Celebrate the season and embrace your autumn glow with the Maple Hazel range. Pick up one today from your nearest Costa Coffee store while stocks last. Costa Coffee, made with heart.
4: Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert is proudly sponsored by Jaimin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Jaimin Foods, the authentic taste of India.
5: TravelHubWorld.com kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays humse sasta कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
0: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: विजिट travelhubworld.com।
6: Hey gorgeous, join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
7: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
6: Get your free tickets. Book now using the promo code LAIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
7: Exclusive media partners LAIKA Radio. Sponsored by Sari Pleeta, Shana Foods, Vegan and Regrow.

0: on Colours TV and Jio Hotstar. And for the first time, watch a live feed from the Big Boss House exclusively on Jio Hotstar.
1: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
2: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
1: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
2: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
3: गणपति बाप्पा के आगमन से घर आएंगी खुशियाँ और सुख समृद्धि से सुनहरा बनेगा आने वाला हर पल।
4: Let's celebrate this auspicious occasion with delicious ethnic namkeen varieties of Jaimin snacks along with its khakra, mango pulp, son papri and pickles.
3: Available at ethnic grocery store near you. Gunpati Bappa Moria.
5: Sonatours.co.uk special offer 14 days to Japan and South Korea for cherry blossoms in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off or lose the discount after. Call Sonatours now on 0208-951-0111.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Leica Extra podcast, Ravi Sharma talks to singer Mohammed Vakil, winner of Sa Re Ga Ma Pa.
8: अगर हम सामने वाले की इज्जत करेंगे, अपने बड़े की, अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, जमाना हमारी इज्जत करे, और जिसने अपने गुरु की माँ बाप की दुआ दे दी उसको आगे जाने से रोक सकते। बड़े पंडितों उस्तादों का कहना है कि संगीत अपने आप में एक ऐसा काम है जो आपके दिल और दिमाग को सुकून पहुँचाता है।
7: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms across London. This is Bally Brambat on Leica Gold.

0: ऐसे बहुत सी फिल्मों के गीत हैं जो शामिल तो करना चाहती हूँ लेकिन वक्त नहीं जा सकते। रेयर 58 में इन्हें फॉरेन बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म मदर इंडिया को अवार्ड मिला था। नेशनल फिल्म अवार्ड इन 1958 फॉर मदर इंडिया। ऐसे बहुत से अवार्ड्स मिले महबूब खान साहब को।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Time's flying by, so this autumn, let's slow things down. Let's savour the moment. It's the perfect time to discover a new autumn favourite. Because the Maple Hazel range has returned to Costa Coffee, transforming your favourite coffee into a true taste of autumn. Celebrate the season and embrace your autumn glow with the Maple Hazel range. Pick up one today from your nearest Costa Coffee store while stocks last. Costa Coffee, made with heart.
3: Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
4: This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
5: इस दिसंबर ठंड को बोलो गुड बाय।
6: जॉइन महाराजा टूर्स ऑन अ 14 नाइट कैरिबियन क्रूज डिपार्टिंग 6 दिसंबर विद डायरेक्ट वर्जिन फ्लाइट्स फ्रॉम हीथ्रो टू बारबाडोस। खूबसूरत बीचेस, सनशाइन और 8 अमेजिंग कैरिबियन आइलैंड्स आपका इंतजार कर रहे हैं। प्राइसेस फ्रॉम जस्ट £1,499 पर पर्सन, ट्विन शेयर। सीट्स लिमिटेड है तो आज ही बुक कीजिए। विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846।
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
8: देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
7: डेजर्ट सफारी,
8: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
7: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
8: तो दुबई के लिए तैयार? यू डू द पैकिंग, दे'ल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
9: साफो ट्रेवल Auto protected.
10: शोएब आलम पेश करते हैं सोलफुल कवाली की महफिल, कवाली क्वीन तैयबा खान के साथ।
11: अपना बनाया तेनू,
10: लुत्फ लीजिए उनकी शानदार गायकी का। वेंसडे 9 सितंबर ग्रीनफर्ड टाउन हॉल में और थर्सडे 17 सितंबर इल्फर्ड टाउन हॉल में। टिकट स्टार्टिंग फ्रॉम £20। VIP एंड मीट एंड ग्रीट टिकट्स आल्सो अवेलेबल। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए कॉल शोएब आलम ऑन 07939137216। टिकट्स आल्सो अवेलेबल एट खान बाबा रेस्टोरेंट, 407 High Road, Ilford.
12: Dubai is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
13: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
14: Dubai is the place. 11, 11.
13: Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
15: Danu 11, 11. Danu Properties.
16: We're finally going home for the wedding.
17: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
16: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
17: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
16: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
17: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
16: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
18: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
19: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
20: The cycle of love. From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true life adventure.
21: I left behind everything I knew.
20: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
21: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
20: The cycle of love. In cinemas nationwide from September the 18th, book now at thecycleoflovefilm.com.
22: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
23: Four beers, please, garçon!
22: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
0: Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
1: Book now on DiwaliStory.com. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
2: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.
3: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज. रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड. जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com.
2: Across London, this is Bally Brambat on Leica Gold.

0: मुकेश जी की आवाज़ में ये गीत सुन रहे हैं आप। साथ बोलने की माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं ट्रिब्यूट पेश कर रही हूँ महबूब खान साहब को, तो उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी भी देती रही आपको। आपको जान शायद आप जानते हो इस बारे में कि महबूब खान साहब मैरिड ट्वाइस विद हिज फर्स्ट वाइफ फातिमा, ही है three sons and then he married the famous Indian film actress Sardar Akhtar in 1915 till 1986 and in 1942. He adopted Sajid Khan जो कि बहुत सी foreign English films में उन्होंने काम किया है। महबूब खान साहब डाइड ऑन ऑफ हार्ट अटैक ऑन 28th of May 1964 एज ए पार्ट ऑफ हिज बर्थ सेंचुरी सेलिब्रेशन। द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट रिलीज्ड स्टैम्प ऑफ महबूब खान टू यू नो जस्ट ऑनर हिम। एंड महबूब स्टूडियो के बारे में आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से ना, वो सिर्फ डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, बल्कि उन्होंने एज एन एक्टिंग भी फिल्मों में काम भी किया है, एज ए राइटर भी। बहुत सारे अवार्ड्स मिले और आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हमने उन्हें याद किया। उम्मीद करती हूँ कि मेरे चुने गीत, मेरी बातचीत आप सबको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट आवर में कुछ एक गाने ही मैं जी एम दुरानी साहब के शामिल कर पाऊँगी, नहीं तो लगेगा ये विंटेज गोल्डी प्रोग्राम बन गया है। पर पहला गीत ज़रूर रहेगा अकीका, यानी कि अक्षय कुमार का, जो आज अपना बर्थडे मना रहे हैं। जिन मेरे साथियों ने मुझे मैसेजेस बड़े प्यार से लिखकर भेजे, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इसी तरह से मेरा साथ दीजिएगा इन द नेक्स्ट आवर एज वेल, जबकि मैंने चुने हुए बहुत से अच्छे अच्छे गाने।
1: Across Greater London, this is Leica Gold, 10:35 AM, DAB and online, a part of the Leica Radio Network.
2: The top stories this hour. Hundreds of police officers lined the street at the funeral of their colleague PC Matthew Blades, who was killed in last month's crash on the A66. Bagpipes were played as the coffin was brought to St Joseph's Church in his hometown of Hartlepool, while flowers spelling the word Dad could be seen on the roof of the hearse. The 37-year-old was killed alongside fellow officer PC Tom Clough in a collision near Middlesbrough, in which five young men also died. Downing Street says the government still has confidence in Britain's main air traffic control boss. Martin Rolfe has faced calls to resign after 2,000 flights were cancelled yesterday and today. The Prime Minister insists Britain stands for fairness after criticism over sanctions placed on illegal Israeli settlements in the occupied West Bank. Yesterday, the government announced a ban on goods produced in the area. The chief rabbi warned the decision could make life more dangerous for British Jews, but Andy Burnham's told MPs he stands behind the move.
3: Where people are being bullied out of their homes, intimidated, we will always stand with the underdog and take what action we can to support them. That, Mr. Speaker, is leadership on the world stage. Britain being true, that is what the British people expect of us, and that is what this government will do.
2: Actor Noel Clarke has been charged with sexual offences, including sexual assault, voyeurism and exposure. The allegations relate to five women. Elsewhere, a body has been recovered during the search for a missing 15-year-old boy who was swept out to sea while on a family holiday. The teenager from Yorkshire went missing at the end of August at Marlow Sands in Pembrokeshire. And walking briskly may lower the risk of early death, even without reaching a high daily step count. Studies found the same benefits can be felt. From Sky News, I'm Imani Rana.
1: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group. Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
0: आइए एक नज़र फिर से डालते हैं आज के मौसम पर। आज लाइट क्लाउड्स हैं, जेंटल ब्रीज चल रही है, मैक्सिमम 19 एंड इट विल गो डाउन टू 11। और कल का मौसम भी अच्छा है, 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा लंदन एंड आसपास के इलाकों में। और मिडलैंड्स में इस वक्त लाइट रेन्स चल रही हैं, थोड़ी थोड़ी जेंटल ब्रीज भी है. मैक्सिमम टेम्परेचर है 23 एंड लो विल बी 14. अपने दिल के मौसम को अच्छा रखिए, बाहर का मौसम जैसा भी हो.
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call South All Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. Bali Brambat.
0: नहीं जी नहीं, ये सरिता सबरवाल है sitting in for Bali Brambat जी. This is the last and the final hour of the show. पहले सुन रहे बैक टू बैक दो गाने, और पहला गाना जो है वो मैंने अक्षय कुमार की फिल्म से चुना है एज ही सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे. तो हमारी तरफ से उन्हें शुभकामनाएं, आइए सुनते हैं.
1: Like a gold. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
4: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
0: TravelHub.
4: At all protected.
1: Leica. Feel good classics all day. Leica Gold.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने इंजॉय किए. फिल्म आरजू से चुना था एक गीत जिसके हीरो थे हमारे अक्षय कुमार जिनका आज बर्थडे है. मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. इनसे बहुत बारी मुलाकात हुई. एक दफ़ा टीवी के लिए इंटरव्यू भी किया उन्हें और रेडियो पर भी इंटरव्यू किया था. वेरी हम्बल एंड आई मेट हिम 3-4 times. बहुत हम्बल हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं. बट ही इज़ वेरी विटी एज वेल एंड नॉटी भी हैं थोड़े थोड़े. आपने बहुत से रियलिटी शोज़ में इन्हें देखा होगा कि किस तरह से अपनी विटीनेस दिखाते हैं. आरजू फिल्म का ये गीत, माधुरी दीक्षित थी इस फिल्म की हीरोइन. एंड दूसरा गीत मैंने चुना था फासले से, 1985 की फिल्म थी. और उम्मीद करती हूँ लता जी का गाया हुआ गीत आपको पसंद आया. अब आर्टिस्ट ऑफ द वीक में इस बार ये हमारे आर्टिस्ट हैं मन्ना डे साहब. दो गीत हैं जिनमें से मैं फिर से डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ सरिता, कैसे डिसाइड करें क्योंकि सारे ही गाने बड़े अच्छे हैं. पहला गीत है मस्ती भरा है समा, लता मंगेशकर और मन्ना डे साहब का गाया हुआ, फिल्म परवरिश का गीत है वो. और दूसरा है तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की धूल हूँ, वो सती सावित्री फिल्म का गीत है. एंड ये भी मन्ना डे एंड लता जी ने गाया. कौन सा गाना आपको ज़्यादा पसंद है, मस्ती भरा है समा या तुम गगन के चंद्रमा? जल्दी से मुझे अपना मैसेज भेज दीजिएगा. बहुत से मेरे साथियों ने ज्वाइन किया है, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. इसी तरह से साथ देते रहें.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट, अगर इनके ज़रिए पैसे आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो काम बड़ा आसान है. यू कैन वॉक इन टू द ब्रांच और वहाँ जाके पैसे आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं. ऑनलाइन जाइएगा या फिर SBI योनो मोबाइल ऐप डाउनलोड किया है तो उसके ज़रिए कीजिएगा. टर्म्स एंड कंडीशंस हमेशा होती हैं साथ साथ, लेकिन बता दें कि आज आपका एक ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड आपको दिला सकता है 128 rupees and 40 paisa.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Leica Gold.
3: Gold Afternoons is sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
4: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera, every day at 8 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
5: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
6: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड
1: ड्रीमिंग ऑफ पैराडाइज
0: डिस्कवर द इंडियन ओशन विद स्काईलॉर्ड क्रूज एंड हॉलीडेज बुक एक्सक्लूसिव एमिरेट्स हॉलीडे ऑफर्स टू मॉरिशस द मालदीव्स सेशेल्स एंड श्रीलंका
1: चूज फ्रॉम लग्जरी बीच एस्केप्स फैमिली रिसॉर्ट्स एंड इनक्रेडिबल मल्टी सेंटर हॉलीडेज ऑल एट एक्सक्लूसिव प्राइसेस
0: कॉल स्काईलॉर्ड क्रूज एंड हॉलीडेज today on 01923883100. That's 01923883100.
1: At all protected.
2: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
3: अरे गुरु आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
2: ये तो बताओ कोई पता चला?
3: गुरु गुरु
4: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
3: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है.
4: सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर.
2: साधु तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए. सुबह से शीघ्र
4: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर.
5: टू बुक कॉल 0208-514-5400. बुक ऑनलाइन एट Eventbrite.
0: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क. Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting. Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
6: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
7: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर.
6: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
8: द साइकिल ऑफ लव From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true life adventure.
9: I left behind everything I knew.
8: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
9: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
8: The cycle of love. In cinemas nationwide from September the 18th, book now at thecycleoflovefilm.com.
10: Like a gold. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे.
11: Artist of the Week is brought to you by our new podcast Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
12: आर्टिस्ट ऑफ द वीक, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं मन्ना डे साहब, तो उनके दो गीतों की चॉइस दी थी और मेरे ज़्यादातर साथियों ने ये गीत सुनना पसंद किया है तो आप तक पहुंचा रही हूँ ये गीत. फिल्म का नाम था परवरिश, 1958 में आई थी ये फिल्म. लता जी एंड मन्ना डे साहब की आवाज़ें आप सुनने जा रहे हैं.
13: मस्ती

0: आर्टिस्ट ऑफ द वीक में मन्ना डे साहब का गाया हुआ ये गीत मैंने शामिल किया, साथ तेरी थी लता मंगेशकर जी। और आइए अब जरा आगे बढ़ते हुए ये एक और प्यारा
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट dairyvalley.net।
0: भी बाली जी की लिस्ट के मुताबिक आज जीएम दुरानी साहब की बर्थ एनिवर्सरी है, लेकिन जब मैंने उनका चेक किया तो इट वाज यस्टरडे। सो फिर भी मैं कुछ एक गीत जरूर शामिल करूंगी लेटर।

0: चाहो तो हटा लो,
1: क्यों दिल में मेरे बसे हो, तुम कौन हो क्या हो, क्यों दिल में मेरे बसे हो।
2: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
3: भाई ये विंटेज गोल्ड प्रोग्राम बिल्कुल नहीं है, लेकिन जीएम दुरानी मुझे कहा गया था कि आज उनका भी बर्थ एनिवर्सरी है, लेकिन उनकी बर्थ एनिवर्सरी कल थी, तो मैंने फिर भी एक गीत शामिल किया। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। गुलाम मुस्तफ़ा दुरानी उनका पूरा नाम था। 8th of September 1919 में उनका जन्म हुआ और 1988 में ही पास अवे। एंड ही वॉज एन इंडियन रेडियो ड्रामा आर्टिस्ट, प्लेबैक सिंगर, एक्टर एंड म्यूजिक डायरेक्टर एज वेल। और बचपन से ही उन्हें गाने का बहुत शौक था। वो फुल टाइम सिंगर रहे लाहौर स्टेशन पर, फिर दिल्ली स्टेशन पर, मुंबई ऑन एयर एयर ऑल इंडिया रेडियो पर उनका उनके प्रोग्राम्स आते रहे थे, रेडियो ब्रॉडकास्टर भी रहे। एंड उन्हें तब सैलरी मिलती थी सिर्फ 70 रुपीस। एंड पश्तो में भी उन्होंने बहुत से गीत गाए क्योंकि दैट वाज हिज नेटिव लैंग्वेज। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, पश्तो लैंग्वेज में उन्होंने बहुत कुछ काम किया है। 1930s से 1940s, 1950s तक उन्होंने बहुत बहुत अच्छे अच्छे गीत गाए। बहुत सी फिल्मों में उन्होंने गाने गाए हैं, लाहौर, मुंबई, दिल्ली में। एंड मुंबई में रहते हुए इन्होंने फिल्मों में काम भी किया। एज एन एक्टर ही मस्ट हैव वर्क्ड ओवर 25 फिल्म्स। हम लोग में भी थे, भूमिका में, याद, देन स्टेट एक्सप्रेस, किस्मत पलट के देख, बहारें फिर भी आएंगी, उस फिल्म में भी उनका रोल था। एंड उसका ये गीत एक्चुअली मैंने क्यू भी किया है, तो मैं कोशिश करूँगी आप तक पहुँचा दूँ। एंड इसके अलावा लाल पत्थर 1971 की फिल्म थी, जिसे डायरेक्ट किया था सुशील मजुमदार ने। एफ सी मेहरा साहब ने उसे प्रोड्यूस किया था, उस फिल्म में भी उनका छोटा सा काम था। तीसरा कौन, उस फिल्म में भी काम किया था। एज ए सिंगर ही हैज सॉन्ग सो मैनी सॉन्ग्स, पर सारे विंटेज गाने हैं। सो उम्मीद करती हूँ जो गीत मैंने शामिल किया आपको पसंद आया। इसके अलावा उनके फिल्म मेकर थे, राइटर थे, डायरेक्टर थे, म्यूजिक कंपोजर ख्वाजा खुर्शीद अनवर टुक जी एम दुरानी। इन हिज फर्स्ट फिल्म कुरमाल, पंजाबी की फिल्म थी, एज हिज असिस्टेंट। उसके बाद उन्होंने फिर फुल फ्लैज काम करना शुरू किया। दुरानी ऑल्सो असिस्टेड हिज फ्रेंड नौशाद फॉर हिज मूवी अराउंड दिस टाइम। एंड बिग ब्रेक फॉर हिम वॉज कमिंग सून इन द फॉर्म ऑफ द मूवी नई दुनिया इन 1942। सो बहुत पुरानी बात है। और मेरे जो वो लिसनर्स जो इस वक्त पुराने गीतों को सुनकर बहुत खुश हो रहे हैं, तो एक और गीत मैं ज़रूर शामिल करूंगी, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए।
4: Gold Afternoons with Bali Brambert. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India, bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you.
3: राइट, यहाँ मैं आपको याद दिला दूंगी, द 20th सीजन ऑफ बिग बॉस इज बैक, होस्टेड बाय सलमान खान। द शो ऑल एयर्स एवरी डे एट 9:30 PM ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार। एंड द फर्स्ट टाइम जियो हॉटस्टार इज स्ट्रीमिंग एवरी एपिसोड अलोंग विद अ लाइव 24/7 फीड फ्रॉम द बिग बॉस 20 हाउस। एंड जियो स्टार, जियो हॉटस्टार जो है, इज नाउ ऑल्सो अवेलेबल एज एन ऐप ऑन स्काई टीवी।
5: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 Ealing Road वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट travelhubworld.
7: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
0: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
8: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
9: Dubai is the place. 11,
8: 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
10: Danube 11, 11. Danube Properties.
11: The wait is finally over.
12: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
11: Mirzapur is coming to the big screen.
13: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
11: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
14: Agar Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
11: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie, in cinemas now.
15: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Adil ji. दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
16: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
17: विजिट mantrahalidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स Your travel mantra.
18: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
19: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
18: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
19: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
18: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
19: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
20: Search is changing.
21: Customers aren't just using Google anymore.
20: They're asking AI.
21: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
20: One business, one recommendation.
21: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
20: Will your business be the answer?
21: Or the one that got left behind?
20: The future of search has already started.
21: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
20: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
22: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 02087677627
23: From South Old Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
24: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
25: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
1: अरे
2: चुपके से दिल दे दे
1: नहीं ते
2: नहीं ते

0: लता जी एंड किशोरदा की आवाज़ों में फिल्म मर्यादा से ये गीत आपने सुना। एक्चुअली आज हम याद कर रहे हैं जिगर मुरादाबादी साहब को भी, जिनकी आज डेथ एनिवर्सरी। ही वॉज बॉर्न एज अली सिकंदर एंड नोन बाय हिज पेन नेम एज जिगर मुरादाबादी। उनकी गज़लें बहुत से आर्टिस्ट ने गाई हैं, पंकज उदास, जगजीत सिंह जी एंड अताउल्लाह सखेलवी, मुन्नी बेगम, शमशाद बेगम, मुबारक बेगम, इन सब ने उनके गीत गाए हैं, उनकी गज़लें लिखी हुई गाई हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आज के प्रोग्राम में नहीं शामिल कर पाई। मैं बता दूं कि ही वॉज़ द सेकेंड पोएट आफ्टर मोहम्मद इकबाल टू बी अवॉर्डेड एज एन ऑनररी डी लिट यानी डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर बाय द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सो जिगर मुरादाबादी साहब की गज़लों का जादू इतना गहरा है कि उन्हें हर कलाम जो भी गाते हैं, महफिलों में गाते हैं, तो वो उनका कलाम ज़रूर पढ़ते हैं, ज़रूर शामिल करते हैं। उनकी अदायगी बहुत खूबसूरत थी, जिस तरह से वो अपनी गज़लें महफिलों में गाया करते थे। ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं, दिल में किसी की राह किए जा रहा हूँ मैं, ऐसी बहुत सी यादगार उनकी गज़लें हैं लिखी हुई, लेकिन मैं आज के प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पाई। सो उम्मीद करती हूँ मेरा साथ आपने पसंद किया। अब सैंडी शाह स्टूडियो में ऑलरेडी आ चुके हैं, आपको ड्राइव कराएंगे। जी हाँ, ड्राइव टाइम में ड्राइव करेंगे आपके साथ साथ आपकी कार को, और आपका मनोरंजन भी करते रहेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मेरी अगली मुलाकात आपसे होने वाली है इस सैटरडे। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ लवली डे।
1: बाली ब्रह्मभट्ट ऑन गोल्ड आफ्टरनून्स।
2: जैमिन गोल्ड आफ्टरनून्स विद बाली ब्रह्मभट्ट। बाली ब्रह्मभट्ट जैमिन फूड्स, बिल्कुल घर जैसा स्वाद और घर जैसी ही बात। अवेलेबल एट एशियन स्टोर्स नियर यू।
3: ये रिश्ता क्या कहलाता है?
4: दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय ये रिश्ता क्या कहलाता है, एवरी डे एट 7 PM ऑन स्टार प्लस एंड स्ट्रीम इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार।
5: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
6: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
7: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
8: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
6: Southall Travel can take you there.
9: Southall Travel, at all protected.
10: 073-00-99-8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग, और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099823।
11: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागस एंड सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं। फॉरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasun.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
12: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
13: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
12: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
13: अ स्पेक्टेकुलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th of September।
14: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम। प्रेम की भाषा.
15: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
16: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
17: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK. 10 days South Africa every month from November to March. Book before the end of this month and get 200 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111. From breathtaking wedding jewellery to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewellers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewellers, the diamond specialists. Call 0208-767-2142.
18: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
19: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
20: London's biggest classics all day. This is Leica Gold.
21: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Leica Gold. Make it a day.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
3: We're finally going home for the wedding.
4: I know, I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
3: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
4: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
3: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
4: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
3: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
5: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
6: Watford में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी, थोड़ा देसी।
7: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
6: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
7: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफोर्ड। कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
8: हे फ्रेंड्स, के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिज, है ना?
9: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची, टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
8: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
10: गेट रेडी क्रिकेट फैंस, द T20 बैटल इज ऑन। टीम इंडिया टेक्स ऑन अफगानिस्तान इन 3 एक्सप्लोसिव T20 इंटरनेशनल्स फ्रॉम 13th टू 17th September. Big sixes, flying stumps and edge of the seat action. Live from 2:30 PM exclusively on Jio Hotstar UK. Download and subscribe now.
11: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
12: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
13: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
12: Get your free tickets. Book now using the promo code LIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
13: Exclusive media partners LIKA Radio. Sponsored by Sari Pleta, Shana Foods, Begin and Regrow.
14: रंजिश सही दिल ही दुखाने के।
15: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
16: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
17: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7:30 PM ऑन कलर्स एंड वॉच इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार.
1: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt

0: विद सैंडी शाह।
1: ये है
2: लाइका गोल्ड
3: travelhubworld.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट travelhubworld.com।
5: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
6: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
5: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
6: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
5: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
6: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
5: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
6: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
7: London, get ready for an unforgettable night.
8: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shah Zaman Ali Khan,
7: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
8: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
7: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
8: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
7: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
9: 0730998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730998823। महाराजा टूर्स के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, सेंटोसा आइलैंड, बाटू केव्स, जेंटिंग हाइलैंड्स, बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेंपल्स, फिर पटाया और कोरल आइलैंड का मजा। फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन। फ्लाइट्स, 4-स्टार होटल्स, इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शंस सब इंक्लूडेड। विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846।
10: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
11: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
12: Big Boss mein is baar milega pardaan aur extra jeevan daan. Tab has tu mein jaan.
5: Big Boss Season 20, every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. And for the first time, watch a live feed from the Big Boss house, exclusively on Jio Hotstar.
13: Royal Chai lai hai, smart solution for your business.
14: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
13: Rich, authentic taste every single time.
14: Royal Chai, brewed for business.
13: Email now, info@royalchaivending.com. Limited offer, terms and conditions apply.
15: 24 days, South America in November or April. First 10 passengers up to 300 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111 or visit sonatours.com.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
16: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics. London's biggest classics all day. Leica.

0: with Sandy Shah. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: So pound's going to pick you up 128.98 Indian rupees, 88.91 Afghani, 376.14 Pakistani rupees, 166.73 Bangladeshi taka and 445.3 Sri Lankan rupees.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the LEICA Radio mobile app now. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: And gold is trading at £104.02 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: निशान असर
3: अभी गोल्ड रेट दिया ना आपने तो मुझे एक शेर याद आ गया।
1: मैं शेर की बात करने लगा था आपके
3: प्लीज साथ। पहले मुझे कर लेने दो।
1: कर ले तो।
3: कानों में उसने पहन के दो मोती के फूल, कानों में अपने पहन के दो मोती के फूल, उसने गिराए हैं सोने के भाव अभी अभी। सिर दे उत्तों लंग गया। और ऐसे सिर वासे तुसी जा रहे हो। हाँ, ऐसे सिर वासे तुसी।
1: कान में फूल कौन डालता है?
3: कान में, हाँ, कान में क्यों नहीं?
1: कान में चुप फूल।
3: हाँ, कान में मोतियों के फूल नहीं पहनते।
1: अच्छा, हैंग, अच्छा, the way you explain it, कान में चुप फूल। I had a question for you. और सिर तो लंग गया। रहने।
3: चलो छोड़ो फिर। चलो, बेस्ती खराब की थी मैं अपने शेर की।
1: जिसका तो मेरी वी कुछ किसी।
3: तुसी तो डिजर्व करते थे ना।
1: शुक्रिया, बड़ी बड़ी मेहरबानी। In a sentence, why do you love shayari so much?
3: Why do I love shayari?
1: हाँ, shayari क्यों करनी है?
3: Who doesn't? मतलब most people love shayari. नहीं,
1: ना कि who doesn't? Many people don't understand it. They're not interested.
3: It's a very beautiful way of expressing your feelings, your emotions in a very जिन कहते हैं ना romantic and stylish way.
1: Okay.
3: चाहे वो दुखी इंसानियत की बात हो, चाहे वो इनकलाबी शायरी हो, चाहे वो रोमांटिक शायरी हो, सब कुछ वो समंदर में, वो समंदर को कूजे में बंद करने वाली बात होती है।
1: कख नहीं पता की कहेगी।
3: हेलो,
1: अच्छा, तो आप शायरी तो पढ़ती हैं दूसरों की, आप खुद भी लिखती हैं?
3: नहीं, मैं खुद जो लिखती हूँ मैं इस काबिल नहीं समझती हूँ सबके साथ शेयर करूँ। मैं अपनी भड़ास निकालने के लिए कभी कभी लिख लेती हूँ।
1: कभी ट्राई किया?
3: नहीं,
1: ट्राई करी।
3: I wonder.
1: ऐसा कर, नेक्स्ट वीक एक अपना लिखा आया,
3: अच्छा,
1: शो में लेके आना।
3: हाँ, तो मैं अपने शो में लेके आऊंगी। मैं तुम्हारे शो में लेके आऊंगी?
1: अपनी वाह खुद करेगी, मैं तुम्हारी वाह करूंगा।
3: नहीं, मेरे लिसनर्स फैसला करेंगे ना।
1: नहीं यार, तो मेरे शो में एक लेके आना, मैं तुम्हारी वाह करूंगा।
3: अच्छा,
1: अपने मुंह से वाह करने का क्या फायदा है?
3: हाँ, ये भी ठीक
1: है कि नहीं? थैंक यू।
3: मैं खुद थोड़ी ना करूंगी।
1: ओ यार, एक ले आई क्या, ये या वो?
3: हाँ जी, बोलो।
1: अच्छा, फर्स्ट सॉन्ग है मेरे प्यारे वतन काबली वाला, ये दोनों विंटेज के गाने।
3: जी, जी।
1: दूसरा, तू प्यार का सागर है फ्रॉम सीमा,
3: तेरी एक बूंद के प्यासे।
1: Is that where your words going?
3: मेरे प्यारे वतन।
1: Oh really?
3: बिल्कुल है मेरे
1: प्यारे। I have to go for तू प्यार का सागर because it's always on vintage girl. It's always requested.
3: वो रोज वाली बात ना कि आप चुनते ही दोनों बराबर लेवल के हो, तो बंदा करे तो करे क्या, और बंदी भी करे तो क्या करे?
1: बंदी शायरी करे बस, और कुछ
3: नहीं। चलो फिर, आप सीट खाली करो, मैं करूं।
1: थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर टेकिंग पार्ट, वेरी वेरी काइंड। वी डोंट फॉरगेट गोल्ड नाइट्स, अनीसा इज नेक्स्ट। इफ यू एंजॉयड वन सॉन्ग ऑन ड्राइव, मेक श्योर यू जॉइन मी टुमारो। हैव अ लवली इवनिंग, एंजॉय द सॉन्ग।
0: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: September for a special SiddhaYu experience and enjoy a free hair massage with SiddhaYu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover SiddhaYu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. SiddhaYu from the house of Vaidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda, a free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
1: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
2: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
1: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
2: A spectacular musical experience is coming to Ovo Arena, Wembley on the 27th of September. Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे साउथ हॉल ट्रेवल
5: फोन 02085748410
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड
6: भक्ति संस्कृति और रामायण की अमर कहानी अब देखिए लाइव ऑन स्टेज द शोमैन स्टूडियो प्रेजेंट्स श्री राम लीला अ ग्रैंड डिवाइन कल्चरल शो 18 सितंबर को बेक थिएटर हेज में एक ही दिन में दो ग्रैंड शोज दोपहर बाद 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक प्रभु श्री राम की लीला हनुमान जी की भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का दिव्य अनुभव 18 सितंबर बेक थिएटर हेज टिकट्स बुकिंग के लिए विजिट करें shriramleela.theshowmanstudio.co.uk
7: वॉटफुट में डिनर प्लान्स थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी
8: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन
7: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम
8: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट इसे यादगार बनाइए विजिट विवेक हाउस वॉटफुट कॉल 01923227274 बुक योर Table today.
9: Sonatours.co.uk special offer 14 days to Japan and South Korea for cherry blossoms in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off or lose the discount after. Call Sonatours now on 0208-951-0111.
10: Up next, Anisa Nasir with The Big Show on Leica Gold.
11: Hey there, main hoon Bali Brahmbhatt. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, unsuni baatein, raag adharit gaane on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 p.m. to 4 p.m.
12: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: कितना प्यार तुम्हें करते हैं। हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता और प्यार का हिसाब तो बिल्कुल ही नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी कहने वाले कहते हैं, मेरे हम सफर मेरे चारा कर, नहीं और कुछ भी तेरे सिवा। मेरे हम सफर मेरे चारा कर, नहीं और कुछ भी तेरे सिवा। मेरी दोस्ती, मेरी जिंदगी, मेरी खामोशी, मेरी बेबसी, मेरा इल्म भी, मेरा नाम भी, मेरी सुबह भी, मेरी शाम भी, जो मिल सके मेरे दाम भी, वो सभी तुझे वो अता करे। मेरे चार अगर तू यकीन तो कर, मुझे मांगना नहीं आ सका, मैंने मांगी फिर भी यही दुआ कि गवाही देगा मेरा खुदा। मैंने जब भी मांगी कोई दुआ, नहीं मांगा कुछ भी तेरे सिवा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: One British pound aaj aapko dila sakta hai 128.4 Indian rupees. Aur yaad rahe ki bhuliyega nahi exchange karna in branch online ya phir SBI YONO mobile app ke zariye. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: और लीजिए दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी गीतों में कुछ कॉमन है और सबसे पहले हमें सही जवाब ऑलरेडी दीनी जी आपकी तरफ से मिल भी चुका है। इतनी आसान थीम रख ली आज मैंने। और नीलेश जी पूछ रहे हैं, कितने मछलियां और मछले फंस चुके हैं अब तक? अब तारासी जी, ताहिर जी, रुखसाना जी, फरजाना जी, शगुफ्ता जी ये सब फंस चुके हैं, उनके जवाब सही नहीं है। दीनी जी रानी ऑफ दी आवर हैं, संध्या भावसर जी, नीलेश जी और सैम शहजाद जी। अब तक आपके जवाब मैं देख पाई हूँ एंड गेस व्हाट, बिल्कुल सही है। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला और हम डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। है शौक सफ़र ऐसा, एक उम्र हुई हमने मंजिल भी नहीं पाई और रास्ता भी नहीं बदला।
1: Anisa Nasir, live across Greater London with the big show. Like a
2: This part of the show is sponsored by Anupama. Every day at 8:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
3: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Lyca Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
4: one performer,
3: countless personalities,
4: a whole universe of entertainment.
3: Sunil Grover, live UK Tour 2026.
4: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
3: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabi to brand new surprises.
4: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
3: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
4: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
6: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
0: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 02087677627.
7: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
8: Like a goal. London का number one Asian retro music station अब available है Greater London में 10:35 AM पर DAB digital radio पर Alexa पे बोलो play Like a Gold और online सुनो likeagold.com पे.
9: Leica Radio launches in Leeds and Bradford soon.

0: हर प्यार करने वाले के जहन में, दिल में, जबान पे ये सवाल कभी ना कभी ज़रूर आता है, बोल मेरे साथ या कितना मुझसे प्यार है। हालांकि मेरा ख्याल है पता होता ही है एक दूसरे को, लेकिन कहते हैं कि कहना, बताना, सुनना और सुनवाना अच्छा लगता है। तो किसी ने बहुत ही खूबसूरती से कहा कि क्या पता तुम्हें, तुम्हें क्या खबर है कि तुम खोज हो मेरी, तुम वहमो गुमा हो, तुम सोच हो मेरी, तुम सुख, तुम चैन, तुम मेरा जुनू हो, तुम धड़कन हो, तुम मेरा सुकून हो, तुम धूप हो मेरी, तुम छाया हो, तुम हो एक जादू और तुम ही माया हो।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
0: सही जवाब बात पहुंचाने वालों में अजिंक्या जी, प्रथा भवे जी, फवाद जी, मंजीत संगर जी, अमिता जी, उल्लास जी और अमिता जी के बाद अमित पटेल जी, आपका भी जवाब कहते हैं बिलेटेड वेलकम बैक, सो स्वीट ऑफ यू। तोची जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है, थैंक यू सो वेरी मच। और आप ज़रा थोड़ी सी तवज्जो दीजिए और ये मैसेज जो है सुन लीजिए, लाइक अ रेडियो एंड लाइक अ गोल्ड टीम अप फॉर अ स्पेशल प्रमोशनल इवेंट, और ये है फॉर सिद्धायु एट क्वालिटी फूड दहेज एंड हौसलो में, ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर रूबी रजा होंगी, आपकी मुंतजर काजल और सैंडिशा, दिस सैटरडे यानी कि 12th September, एंड इन्जॉय अ फ्री हेयर मसाज सेशन विद सिद्धायु हेयर ऑयल एंड सिद्धायु शैम्पू, एक्सप्लोर कीजिए सिद्धायु टूथपेस्ट एंड एक्सपीरियंस द नेचुरल गुडनेस ऑफ सिद्धायु आयुर्वेदा, सिद्धायु फ्रॉम द हाउस ऑफ बैद्यनाथ विद ओवर 100 years ऑफ ट्रस्टेड आयुर्वेदिक लेगेसी, जाइएगा जरूर, इंजॉय कीजिएगा।
2: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल, एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ, सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।

0: all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
1: Just dropped the brand new TUI Smiles Rewards Club. Join for free today to unlock exclusive members-only deals, personalised rewards, and chances to win amazing prizes. Get even more from your holiday. Join for free today. TUI. Big rewards, big smiles. At all and after protected. T's and C's apply. See website for details.
0: This is Anissa Nasir with The Big Show.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट TravelHubWorld.com.
4: शोएब आलम पेश करते हैं सोलफुल कवाली की महफिल कवाली क्वीन तैयबा खान के साथ.
5: अपना बनाया तेनू
4: लुत्फ लीजिए उनकी शानदार गायकी का. वेंसडे 9 सितंबर ग्रीनफर्ड टाउन हॉल में और थर्सडे 17 सितंबर इल्फर्ड टाउन हॉल में. टिकट स्टार्टिंग फ्रॉम £20. VIP एंड मीट एंड ग्रीट टिकट्स आल्सो अवेलेबल. बुकिंग और इंक्वायरी के लिए कॉल शोएब आलम ऑन 07939137216. टिकट्स आल्सो अवेलेबल एट खान बाबा रेस्टोरेंट 407 हाई रोड इल्फर्ड.
6: Every morning a shopkeeper opens his doors.
7: Lights on, shutters up, staff ready.
6: But today's customers don't start on the high street.
7: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
6: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
7: They walk into your competitors.
6: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
7: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.

0: खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7:30 PM ऑन कलर्स एंड वॉच इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार.
1: The wait is finally over.
2: अब सही सुर लगा रहे मुमताज.
1: Mirzapur is coming to the big screen.
3: गद्दी ना तो विरासत से मिलती है, ना सियासत से.
1: Power, revenge और मिर्जापुर की गद्दी के लिए फिर मचेगा बवाल.
4: अगर कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर.
1: पंकज त्रिपाठी एस कालीन भैया, अली फजल एस गुड्डू पंडित और मिर्जापुर के आइकॉनिक कैरेक्टर्स अब सिनेमा में और भी बिगर. मिर्जापुर द मूवी इन सिनेमाज नाउ.
3: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा.
5: We're finally going home for the wedding.
6: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
5: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
6: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
5: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
6: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
5: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
7: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
8: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
9: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
10: Sonatours.co.uk. 13 days Vietnam and Cambodia departures every month, September to December. Get 100 off if you book this month. Call Sonatours now on 0208 951 0111.
7: Leica Radio Network, proud hospitality partner.

0: Greater Manchester, Bradford, Leeds. We are getting bigger. Leica Radio.
1: We hit
2: Leica Gold.
0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
3: One British pound can get you 375.7 Pakistani rupees, 128.9 Indian rupees, 89 Afghan Afghani, 166.6 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
1: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
3: The gold is currently trading at £104 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: कुछ सही और कुछ गलत जवाब देने वालों के नाम इरफान जी, हरप्रीत जी, अरुणा जी, आपके जवाब गलत हैं। गुरसरनजीत जी, रजनीश जी, मोहम्मद अयूब चौहान जी, अंजुम जी, सुमीला मुंगर जी, वीना जी, तारिक राहिल जी और सलमा जी, वेल डन।
0: बिगेस्ट इंडियन एंड पाकिस्तानी क्लासिक्स विद अनीसा नासिर।
3: इतना आसान कि जितना भी आसान हो सकता है और कितना आसान हो सकता है, मुझे आप ही बताइए। बेहद शुक्रिया आप सभी के मैसेजेस के लिए। यस यस, फाइनल आवर में फरमाइशें होंगी।

0: सजा ये प्यार की यूं बेमिसाल दी उसने, सजा ये प्यार की यूं बेमिसाल दी उसने, उदास रहने की आदत सी डाल दी उसने, कि जब भी अपना बनाने की बात की मैंने, ये बात बातों ही बातों में टाल दी उसने। लो जी टाली तो नहीं, अंसर महमूद जी, गीता हर्षद जोशी जी, दिनेश पोपट जी, नौशीन खान जी, रानी जी, सलाम से आपके जवाब बिल्कुल सही हैं। जवाब नंबर एंडिंग विद 167 आपका भी सही है। अगर आपके कॉन्टेक्ट नंबर पे जाती हूँ तो वहाँ पे एंटरटेन लिखा है, अपना नाम आप लिखते या लिखती नहीं है तो मैं क्या कहकर मुखातिब करूँ, प्लीज़ मुझे बताइएगा। डॉक्टर अशोक जी, प्रीति जी बेल्जियम से, महेंद्र जी और लुबना जी लाहौर से, आपके जवाब गलत हैं। आज गीतों में इतना कितना जितना जितनी कितनी शामिल रहा और बेहद शुक्रिया, भले आपने गलत जवाब दिया लेकिन आपने कोशिश की, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। प्रोग्राम के अगले हिस्से में भी कुछ ना कुछ तो रहेगा शामिल, हिस्सा लेने के लिए आपके लिए, तो सुनते रहिएगा।
1: Reminisce those classics on Like a Gold.
0: दिल के लुट जाने का इजहार जरूरी तो नहीं, ये तलाश सरे बाजार जरूरी तो नहीं, मुझे था इश्क तेरी रूह से और अब भी है, जिस्म से कोई सरोकार जरूरी तो नहीं, मैं तुझे टूट के चाहूं तो ये मेरी फितरत है, तू भी हो मेरा तलबगार जरूरी तो नहीं। ये भी आप ही ने भिजवाया, नाम भिजवा दीजिए प्लीज अपना। गुड इवनिंग।

0: वो आए बज्म में इतना तो मीर ने देखा, वो आए बज्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। ये बहुत ही प्यारा सा गीत मैं बहुत ही प्यारे से सैंडी शाह जी के नाम करना चाहूँगी। अब ये मत पूछिएगा कि क्यों, क्योंकि मेरे पास कोई वजह है नहीं, बस इतना पता है कि उनका बहुत फेवरेट गीत है और मैं उनके नाम ना करूँ तो बहुत नाइंसाफी होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे जदीद शायर ने, आज के शायर ने कहा है, ना कॉल सुनना ना कॉल करना, ना कॉल सुनना ना कॉल करना, ना पढ़ के मैसेज जवाब देना, जदीद दुनिया जदीद दुख है, शदीद दुख है भाई, शदीद दुख है।
1: Like a Radio Network, broadcasting across Greater London. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: लो जी मनी टॉक लेते हैं, आपको बता देते हैं कि £1 in British sterling can get you up to 128.4 Indian rupees today. Don't forget to exchange in branch online या फिर SBI Yono mobile app के जरिए. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: देख लीजिए T&Cs हर जगह पे अप्लाई होती हैं, अगर नहीं होती तो हमारे और आपके प्यार के बीच में नहीं होती। कसमें वादे प्यार वफा, और मैं इस बात के लिए सैंडी को कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी इतनी नज़र थी, मेरा इतना दिल था, मेरी आंख थी इस गीत पर, बचा दिया, सुनवा दिया आपको। चलिए की बात है, तो अब आगे बढ़ें और आपको ये चंद अल्फाज बताएं ताकि आप मुझे बता सकें कि मैं कौन से गीत की बात कर रही हूँ। हाथ बड़ा होला रखे जे मैं सुने, बर्बादियों का फजूल था मनाता चला गया, बर्बादियों का फजूल था मनाता चला गया, मनाता चला गया बर्बादियों का फजूल था, कौन सा गीत है?
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Oh, how relaxing was that yoga session? I feel so free.
3: Speak for yourself. I can never let go.
2: Bladder leaks. I know, right? I'm so done compromising. I got a new bit of yoga kit. Always discreet pads. Here, try for yourself next week.
3: Love you lots, but this thin pad won't keep up with my heavy leaks.
2: Just trust me on this one. So, all zen and liberated, are we?
3: Let's just say I found my flow.
2: Always discreet. Live with no compromise.
1: This is Anisa Nasir with The Big Show. Like a god.
4: Tum dena saath mera. This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera. Every day at 8 PM on Star Plus. And stream it anytime on Jio Hotstar.
5: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Thomas.
6: Daddy!
5: He needs to get home for bedtime stories because he does the absolute best voices. You help Thomas show he cares and we'll help you take care of business. Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority.
7: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96, एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96, परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
8: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
10: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
11: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
12: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
13: Greater Manchester, Bradford, Leeds. We are getting bigger. Leica Radio.

0: फोन मुझे पता है तमाम साहिबाज और साहिबान जो हैं वो मेरा साथ निभा रहे हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं, बेहद शुक्रिया। और इसका सबूत इसलिए इतनी मतलब कॉन्फिडेंस से मैं कह रही हूँ क्योंकि आपके बेशुमार प्यारे प्यारे मैसेजेस मुझ तक पहुँच रहे हैं। आज के उल्टे पुल्टे को लेकर तो आप लोग इस तरह का सलूक कर रहे हैं जैसे आप पहले घंटे में थीम के साथ करते हैं, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और आप यकीन करें अभी तक एक भी गलत जवाब नहीं आया है। तो लीजिए रुखसाना अफजल जी, आपको बहुत मुबारक, आपने सबसे पहले सही जवाब आज भिजवाया और आपने एक बहुत प्यारा सा शेर भी लिखा था। अब आपको मैसेज मिले तो फिर ना, मतलब इतने सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं, नॉट दैट आई एम कंप्लेनिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ मिल गया मिल गया, फरमाती हैं जॉन एलिया जी का शेर है कि तुम बनो रंग तुम बनो खुशबू, तुम बनो रंग तुम बनो खुशबू, हम तो अपने सुखन में ढलते हैं। क्या बात है रुखसाना अफजल जी, वेरी वेल सेड। कविता कुमार जी जर्मनी से, कीरित जी, अजिंक्या जी, प्रज्ञा जी, संध्या भावसर जी, गुल जी, मैं आपकी परेशानी समझ गई हूँ आपकी प्रॉब्लम मेरी समझ में आ गई, लिहाजा यस यस यस यू आर राइट, मेरा मतलब है आपका जवाब बिल्कुल सही है। अंजुम जी, उल्लास जी, उमर जी दुबई से कहते हैं आई मिस योर फर्स्ट आवर, ऑफ कोर्स यू डिड, अब बताएं माफ किया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोलिए आपके साथ क्या सलूक किया जाए। शुगुफ्ता जी, जैस जी जलंधर से, ओहो चंडीगढ़ का रियासी की मुंडा जट्टा दा जलंधरों आके किते मर ना जावा मैं गुड़ खाके, वही है ना गाना, वही वाला जलंधर। मजे करो जी मजे, और मोहब्बत करने वालों हम मोहब्बत इसको कहते हैं, वहाँ जाकर भी नहीं भूली, कल भी उनका मैसेज आया था और आज भी, थैंक यू जैस जी। सलमा जी, नीलेश जी, रीटा जी, नीलेश जी वैसे मुझे बता रहे हैं आज मैच चल रहा है फुटबॉल का, उसके बावजूद ध्यान तो आपका इधर ही है, पकड़े गए। रीटा जी जर्मनी से बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, सही जवाब है सुलेमान जी। नवा है सोनिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैंने पहले आपका नाम देखा है अपनी टेलीफोन मैसेजेस वाली स्क्रीन पर, लेकिन आपका खैर मकदम, आपका जवाब बिल्कुल सही है। रानी जी, फरजाना जी, फरजाना जी अब की ना फरजाना वाली बात, यानी अक्लमंदी की, बिल्कुल सही जवाब। सुमीला संगर जी, सुमीला मुंगर जी, आपका भी जवाब सही है। और बिल्लू बादशाह 167 वालों ने भेद खोल दिया, कहते हैं जी मेरा नाम है बिल्लू बादशाह, ओ बादशाह जी तुसी, मैं उनकी दसा बिग बॉस विच ते बादशाह दा नाम भी लेना जड़ा ना वो हमारी ईशा रिकी जो है उनको अच्छा नहीं लगता, जब कोई कहता तो कहती नाम मेंशन करो, फिर किसी ने पूछा कौन है क्यों, कहती मेरा एक्स।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड।
0: और
1: ब्रेक्स अ ब्रॉट टू यू बाय साउथ ऑल ट्रैवल।
0: मैं पूछने वाली थी कि और मैंने अब क्या करना है, तो वो मुझे ये करना है कि आपको बताना है हॉलीडे ब्रेक्स के बारे में, और साउथ ऑल ट्रैवल नोन फॉर इट्स कंपेटिटिव हॉलीडे डील्स टू दुबई, कांटेक्ट कीजिएगा साउथ ऑल ट्रैवल को आज ही ऑन 0208 574 8410। साउथ ऑल ट्रैवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is Anisa Nasir on Like a Gold Great.

0: इसको कहते हैं गाना और डूब कर गाना, कि हम सुनते सुनते भी डुबकियां खाने लग जाते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल नंबर फ्रॉम द मूवी सुजाता। और लीजिए, भी प्रीति जी बता रही हैं कि वो तो खुद हॉलीडेज पर जा रही हैं। मेरा ख्याल है जैस जी का सुन के थोड़ी सी उनको भी ना जो मुझे होती है ना वो हुई, और उन्होंने कहा कि वो 3 वीक के लिए जा रही हैं इंडिया। हॉलीडेज वो क्या होता है, कोई खाने वाली चीज़ है? अच्छा चलें, जो भी होता है, खैर से आप जाइए, खैर से आइए। और कहती हैं मैंने सुना ही नहीं, बर्बादियों का फजूल था मनाता चला गया, बर्बादियों का फजूल था मनाता चला गया। और बहुत सारे और भी मैसेजेस शामिल हो गए हैं, उनके नाम भी ज़रूर शामिल करूंगी। सुलेमान जी कहते हैं बिल्कुल सही, हम सही पकड़े हैं कि वो कभी कभी सुनते हैं ऑनलाइन हमको, तो ये कभी कभी को आप रेगुलर क्यों नहीं कर देते जी?
1: ये है लाइका गोल्ड,
0: गीत संगीत के साथ साथ हम आपको बड़ी मजे मजे की खबरें इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाते हैं। कैच कीजिए लाइव एंड एक्सक्लूसिव क्रिकेट एक्शन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान ऑन जियो हॉटस्टार। 3 वनडे इंटरनेशनल फ्रॉम संडे 13 सितंबर अंटिल थर्सडे 17 सितंबर फ्रॉम 2:50 PM। डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टू द जियो हॉटस्टार ऐप नाउ। जियो हॉटस्टार इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप। बस जी टाइम नहीं है, आगे चलो।
2: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द ऋतु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
0: और अब आज ही जी जिंगल जी चलिए
1: लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट।
0: और बता दूं आपको कि इस एपिसोड में जब बहुत जल्दी और बहुत कुछ बोलना होता है और टाइम सामने दिखाई भी दे रहा होता है कि जल्दी से जा रहा है, हाँ तो मैं आपको बता दूं कि लाइका एक्स्ट्रा न्यू एपिसोड जो है पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 32 है। इसमें होस्ट हैं रवि शर्मा जी और मेहमान हैं बहुत प्यारे जनाब मोहम्मद वकील साहब, जो बहुत मंजे हुए गायक हैं, सिंगर हैं। उनकी जर्नी के बारे में जानिए और उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके उसूल सुनिए, उनकी बातें सुनिए, आपको मज़ा आ जाएगा। तमाम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रहता है हमारा लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर, अनीसा नासिर विद द बिग शो, वीकनाइट्स फ्रॉम 7 PM। ट्रेवल हब वर्ल्ड .com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 Ealing Road वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब वर्ल्ड .com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782883 और विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड .com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड .com।
4: The Bhajan Clubbing Hype lands in London this October as Backstage Siblings take the stage for their first ever UK performance. Experience the pioneers of Bhajan Jamming live on Friday 9th and Saturday 10th October at SKLPC UK Northolt. 2 nights you won't forget. Tickets are moving fast. Book now at sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners like our radio network.
0: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
5: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर travel mantra. Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
6: Don't miss out. Call 0208-150-2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
7: Get ready, cricket fans. The T20 battle is on. Team India takes on Afghanistan in 3 explosive T20 internationals from 13th to 17th September. Big sixes, flying stumps and edge of the seat action. Live from 2:30 PM exclusively on Jio Hotstar UK. Download and subscribe now.
8: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
9: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
8: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
7: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Leica Radio launches in Leeds and Bradford.

0: और सोहबत खान जी, मुझे पूरा यकीन था कि आपका मैसेज आएगा और आ गया, बेहद शुक्रिया। नीलम जी, गीता हर्षित जोशी जी और प्रीति जी बेल्जियम से, आपके जवाब बिल्कुल सही हैं। अब ब्रेक के उस पार आप सुनेंगे उल्टा पुल्टा। और प्रीति जी, बुरी चलाओगे हैं आप, कहती हैं मैं तो सिर्फ 3 वीक के लिए छुट्टी पर जा रही हूँ, 4 महीने और 14 दिन के लिए नहीं जा रही, मेरा बॉस तो मुझे बाहर खड़ा कर देगा। मेरा बॉस सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है।
1: Anisa Nasir, live across Greater London with The Big Show. This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu, from the house of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
3: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
4: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
3: Get your free tickets. Book now using the promo code LIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
4: Exclusive media partners LIKA Radio. Sponsored by Sari Pleta, Shana Foods, Begin and Regrow.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services.

0: से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ, आजा रे आ जरा।
1: London, Midlands, Manchester. This is the Leica Radio Network. Elisa Nasir, live across Greater London.

0: ये दिल ये पागल दिल मेरा, सीने में हिजरे यार के घाव के बावजूद, सीने में हिजरे यार के घाव के बावजूद, जीना तो है ना जहनी दबाव के बावजूद, फिर कहकहा लगाना पड़ा जिंदगी के साथ, फिर कहकहा लगाना पड़ा जिंदगी के साथ, आवाज में नमी के रचाओ के बावजूद। क्या प्यारी पसंद है हमारे सुनने वालों की, एक के बाद एक प्यारे से भी प्यारा गीत। मैं आपकी समातों की नजर करती रहूंगी पूरे 10 बजे तक। तो लीजिए, ये फरमाइश किसकी थी, पहला गीत खुद ही भूल गई कि पहला गीत कौन सा था। हाँ, हरप्रीत जी, ऑल द वे फ्रॉम कनाडा, आपने कहा कि यू मेड माय डे। अरे आप कहें और हम ना सुनवाएं, ऐसे तो हालात नहीं। शमीम जी, दूसरी गज़ल जो है ये अभी अभी आपने सुनी गुलाम अली खान साहब की आवाज़ में, आपकी पसंद यकीन करें बेशुमार लोगों की पसंद बनी। तो ऐसे से गीत, ऐसी सी गज़लें ज़रूर मांगा करें। और आपको बता दूं, बहुत जल्द लाइक का गज़ल जो है वो लॉन्च होने वाला है, उसका इंतज़ार कीजिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling today can get you up to 128.4 Indian rupees. तो भूलिएगा नहीं exchange in branch online या फिर SBI Yono mobile app के जरिए। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं मन्ना डे जी। उनकी आवाज में बहुत ही प्यारा सा गीत हमने चुना है, वो सुनेंगे और उसके बाद आई थिंक संध्या भावसर जी आपकी पसंद आ रही है।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Oh, how relaxing was that yoga session? I feel so free.
3: Speak for yourself. I can never let go.
2: Bladder leaks. I know, right? I'm so done compromising. I got a new bit of yoga kit. Always discreet pads. Here, try for yourself next week.
3: Love you lots, but this thin pad won't keep up with my heavy leaks.
2: Just trust me on this one. So, all zen and liberated, are we?
3: Let's just say I found my flow.
2: Always discreet. Live with no compromise.
1: This is Anisa Nasir with The Big Show. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. Get ready, UK. Snill Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
4: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snill Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
1: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
1: For more information, contact 07585 801801. Official radio partner Leica Radio Network.
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।

0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
3: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
4: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
5: भक्ति संस्कृति और रामायण की अमर कहानी अब देखिए लाइव ऑन स्टेज द शोमैन स्टूडियो प्रेजेंट्स श्री राम लीला अ ग्रैंड डिवाइन कल्चरल शो 18 सितंबर को बेग थिएटर हेज में एक ही दिन में दो ग्रैंड शोज दोपहर बाद 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक प्रभु श्री राम की लीला हनुमान जी की भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का दिव्य अनुभव 18 सितंबर बेग थिएटर हेज टिकट्स बुकिंग के लिए विजिट करें श्री राम लीला .theshowmanstudio.co.uk
6: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
7: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
8: Like a goal. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे
9: Artist of the Week is brought to you by our new podcast Laika Extra stream it now and be a part of the conversation
10: अरे तो

0: दिल ने फिर याद किया, और दिल ने जिन्हें कभी भुलाया ही ना हो उन्हें याद क्या करना, बस उनकी याद ताज़ा कर रहे हैं मन्ना डे जी, हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक। और इस गीत में उनका साथ निभाया आशा भोसले जी ने। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, और 1966 की फिल्म से लिया था, आज भी ताज़ा बताज़ा। लीजिए अब एक मैसेज जो है वो मुझे आपके नाम करना है, आपके कानों तक पहुँचाना, एक नहीं बल्कि क्वाइट अ फ्यू।
1: Leica Radio launches in Leeds and Bradford soon.
0: Yes, definitely, inshallah. लेकिन एक और मैसेज है, Leica Radio and Leica Gold टीम अप कर रहे हैं फॉर अ स्पेशल प्रमोशनल इवेंट के लिए फॉर सिद्धायु एट क्वालिटी फूड्स हेज और हॉन्सलो में, तो ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको मिलेंगे सैंडी शाह जी, काजल, रूबी राजा दिस सैटरडे 12 सितंबर, एंड एंजॉय अ फ्री हेयर मसाज सेशन विद सिद्धायु हेयर ऑयल एंड सिद्धायु शैम्पू। एक्सप्लोर सिद्धायु टूथपेस्ट बहुत अच्छा है, उसकी खुशबू जो है ना, क्योंकि वो आयुर्वेदिक है तो उसका अपना ही जो है वो रंग ढंग है, और एक्सपीरियंस कीजिए खुद नेचुरल गुडनेस ऑफ सिद्धायु आयुर्वेद सिद्धायु फ्रॉम द हाउस ऑफ बैद्यनाथ विद ओवर 100 ईयर्स ऑफ ट्रस्टेड आयुर्वेदिक लेगेसी। जरूर जाइएगा, हमारे साथियों से मिलिएगा, और उसके साथ साथ इन चीजों का भी फायदा उठाइएगा।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: सदियों से तुझे तकते हुए सोच रही हूँ, सदियों से तुझे तकते हुए सोच रही हूँ, दिल तेरे हद्दो खाल से भर क्यों नहीं जाता। दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता। शायद इसीलिए किसी ने कहा है कि जिस जगह जीत यकीनी थी कोई खौफ ना था, जिस जगह जीत यकीनी थी कोई खौफ ना था, उस जगह से भी हुई हार खुदा की मर्जी। उसने जब छोड़ना चाहा तो फकत इतना कहा, आदमी ठीक थे तुम यार, खुदा की मर्जी। संध्या भावसर जी, आप खुश तो हम खुश।
3: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
2: जी हाँ, और उसके साथ साथ आपको बता दें कि बिग बॉस इज बैक, 20th सीजन जो है बिग बॉस का शुरू हो चुका है और होस्ट कर रहे हैं हमेशा एक तरह सलमान खान। शो जो है एवरीडे एयर किया जाता है 9:30 PM ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार पर, और पहली बार जियो हॉटस्टार इज स्ट्रीमिंग एवरी एपिसोड, और उसके साथ साथ लाइव 24/7 फीड फ्रॉम द बिग हाउस 20 हाउस। जियो हॉटस्टार इज नाउ ऑल्सो अवेलेबल एज एन ऐप ऑन स्काई टीवी। ये थी इतला आप तक पहुंचाने के लिए।
4: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 AM Saturdays and Sundays. Like a gold in London, the Midlands and Manchester.
0: This is Anisa Nasir with The Big Show. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 Ealing Road Wembley। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट travelhubworld.com।
6: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है। बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द UK। जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट। एक शाम सोलफुल म्यूजिक, डिवोशन और एनर्जी के नाम। टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क।
7: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
8: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
7: ये तो बताओ, कोई पता चला?
8: गुरु गुरु,
9: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
7: साधु, तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र।
9: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th of November। टू बुक कॉल 0208-514-5400। Online at Eventbrite.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: Two businesses.
12: Same town.
11: Same service.
12: One appears on page one of Google.
11: The other doesn't.
12: Guess which one gets the customer?
11: The truth is brutal.
12: The first page of Google gets the business.
11: Everyone else gets what's left.
12: So here's the real question.
11: When your customers search for what you sell, do they find you?
12: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
11: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
13: The wait is finally over.
14: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
13: Mirzapur is coming to the big screen.
15: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
13: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
16: Agar Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
13: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie in cinemas now.
15: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Non-stop classics. Classics. Leica Gold. Greater Manchester, Bradford, Leeds. We are getting bigger.

0: वन एंड ओनली मलिका तरन्नुम नूर जहां जी। और जैसे ही हमारा गजल स्टेशन लॉन्च होता है आपको ऐसी बेशुमार प्यारी प्यारी गजलें सुनने को मिलेंगी। मैं अपने हिजर की दुनिया में अब आबाद रहती हूँ, किसी की याद आती है किसी की याद जाती है। और टीटू जी आज आपको हमारी याद आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो वेरी मच। लीजिए दोस्तों आखिरी दो फरमाइशों का लुत्फ उठाइए, अनीसा को आज के लिए इजाज़त दीजिए, बशर्ते ज़िंदगी कल हाजिर होती हूँ। और मेरे जाने के बाद गोल्ड नाइट्स के चुने हुए म्यूज़िक का लुत्फ उठाना हरगिज़ मत भूलिएगा। काजल सुबह हाजिर हो जाएंगी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लेकर। शब खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, रब सोने दे वाले।
1: This is Anisa Nasir with

0: Laika Gold. This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
1: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
0: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
1: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
0: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
2: फंक्शन रखा हुआ है।
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
0: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
4: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
5: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
6: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203-773-633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स your travel mantra.
7: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
8: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
9: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
10: Laika Gold par har raat ki yahi reet. Purane magar sada bahar geet.

0: An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
1: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
0: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
1: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
3: The South Asian Film Festival UK brings to the big screen Raj Kapoor's Sangam in stunning 4K on the 4th of October. Celebrate 50 years of Yash Chopra's Kabhi Kabhi on the 11th of October and marking its 25th anniversary, Dil Chahata Hai on the 18th of October. And before every screening, a filmy sing-along medley celebrating the greatest songs and stars, supported by BFI National Lottery Funding, official radio partner, Laika Radio. Book now at showcasecinemas.co.uk/SAFUK or visit safuk.com.
4: ताज़ा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ।

0: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।
1: फिर याद गुजारू